हो जाती है मेरे यार। मोफी के नाम था हीरो नंबर वन फन्ने 1990। और ये है मूवी के नाम क्या है मेरे ख्याल से भाई गीता दत्त इस फिल्म में काम किए हैं। आओ सुनाइए कौन से नंबर ये है।

मुझे बता दे तू भी किस पे आ गया है। गीता दत्त का ये जोंग थे हमारे दोस्तों। और तो इस मूवी का नाम है नागिन। बहुत लोग देखकर इस फिल्म को पसंद किया है। और परमाशी मोहम्मद रफी और रफी का ये यानी कि आशा जी का ये जोंग है। आओ मिलकर सुना जाए।

होगा। मूवी के नाम थे नागिन का ये सॉन्ग, सुपर हिट्स फिल्म थी हमारी दोस्तों। ये भी एक जिपर जिपर एंड जिबर सॉन्ग थे। पद्माशी रफी के बाद में हम आते हैं नाइटिंगेल लता जी और तलत महमूद का। ये बॉलीवुड क्लासिक सॉन्ग है, निखती होंद शस्त्र का ये गीत है और सुना जाए।

और लता जी और तलत महमूद का ये सुपर सॉन्ग थे। साथ ही यार किशोर दादा क्या सुनाते हैं, एक डुएट के ओर हम लोग आज चला जाएं। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और शर्मिला टैगोर अपना कला को बहुत ठीक से किया है।

और मैं प्यासा तुम सावन द्वैत सॉन्ग किशोर दादा और नैतिकेल लता जी का और ये सुपर सॉन्ग थे। एक दोस्तों हम चलते हैं एक और हो या आए हैं दूर से, आए हैं दूर से रेडियो फोन में और दूर दूर तक हम सबका आवाज तो जाते हैं।

और दोस्तों इसके बाद तो हम चलते हैं एक सुपर सॉन्ग की ओर। दूसरा आदमी जिसमें इस मूवी में ऋषि कपूर और नीतू सिंह ने काम किया है, किशोर कुमार का ये सॉन्ग है लता जी के साथ। और ये गीत गाते गाते गाते गाते ऋषि कपूर और नीतू सिंह में प्यार हो जाते हैं और शादी भी कर लेते हैं।

और नजरों से तो कह दिया है प्यार में क्या क्या हो जाते हैं। और अगर आपको प्यार भी हो गया है ये छोटी उम्र में तो ये गीत आपको सुनना पड़ेगा दोस्तों। छोटी छोटी उम्र में क्या क्या ना हो जाता है और वो कभी बाद में पछताना पड़ता है नहीं, बाद में उसको हम पछताते ही नहीं, सोचते ही कि खूब किया है, ठीक किया है।

मूवी का नाम है बैराग, छोटी सी उम्र में। और नैती जी लता जी का ये जोंग थे जिसमें दिलीप कुमार और शायरा मानू ने काम किया है। बाद में जाकर ये दोनों भी शादी कर लिए थे। उम्र में शायरा मानू बहुत छोटी थी दिलीप कुमार के आगे, फिर भी छोटी सी उम्र में प्यार तो हो जाते हैं। और कभी कभी हम चला जाते हैं उस ओर जब कभी हम भी 16 साल के थे। आओ सुना जाए तो क्या होते थे उस जमाने में जब हम लोग 16 साल के थे।

सत्रह भी बिट जाएगा और सत्रह बस बांध में पचास आ जाएगा, साठ आ जाएगा, तो सोचते रहना कि क्या हुआ है। फिल्म बैराग की ओर हम फिर एक बार चलते हैं।

कोई सूरत है तू हसीना बड़ी खूबसूरत है तू मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

कोई बोरस है तू हसीना बड़ी खूबसूरत है तू मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

0: इसके तरता हूँ आशिक मेरा नाम है
1: आशिक
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है ऐश करना मेरी जान मेरा काम है
1: ऐसे भी हो

और दोस्तों सारे शहर में अब सा और कोई नहीं है, सारे शहर में फिल्म के नाम बैरांग नीखती होंदत एन जसन जीवत का ये जोंग है हमारे दोस्तों।

एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी मिलके आपको सुनाए हैं फिल्म में है राही बदल गई है। इसी फिल्म से निकाल कर ये शानदार गीत हमने पेश की और आप उम्मीद है सुने होंगे और अवश्य अच्छा लगा होगा। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और मैथ मुकेश, मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, और देखते हैं किशोर कुमार जी साथ हैं।

दो जासूस करें महसूस, रफ़ी साहब और माइती मुकेश मिल के ये गीत गाए हैं। आपको पता है रफ़ी साहब मुकेश जी बहुत गाने नहीं गाए हैं, कुल मिलाकर जहाँ तक जोड़ा गया है, मिले हैं लोग को, मुझे भी मिला है, तो द्रियन त्रियन तक गाने हैं, उसमें से ये एक था। टोटल मिलकर यानी कुल मिलाकर द्रियन त्रियन तक गाने रफ़ी साहब और मुकेश जी साथ मिलकर गाए हैं, और उन द्रियन त्रियन तक में से यानी 23 में से ये एक था। दो जासूस करे महसूस फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है देखते हैं, हाँ, माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, ये गीत लेकर।

मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, करोड़ों के दिल पर राज करने वाला मुकेश जी आपको सुनाइए मेरे प्यार में क्या वफा न थी। क्या बात है, ये गीत सुनकर रफ़ी साहब ने कहा अगर प्यार की बात है, वफा की बात है और बेवफा की बात है तो चलिए हम आपको ये सुनाते हैं कि जवानी और दीवानी की बात कर रहा है। लीजिए रफ़ी साहब की आवाज़ में ये जवानी दीवानी की बात। जवान तुम हो, जवान हम हैं।

शंकर जय किशन के साज पर रफ़ी साहब की आवाज़ में पेश हुआ जवान तुम हो जवान हम हैं, फिल्म दुनिया में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए हैं। चलिए अगला गीत हम पेश करते हैं और ये है, इसे चून अभी नहीं किए थे क्योंकि भी मुझे भी नहीं पता गीत कौन सा है। चलो मिलकर सुनते हैं, आप भी सुनिए और मैं भी सुनता हूँ।

ये कश्मीर है, ये कश्मीर है गीत के शब्दों से यही पता चलता है कि इसकी शूटिंग अवश्य हुई होगी कश्मीर में। बर्फीली यादों, बर्फीली पहाड़ों, गर्मी भी हो सकता है, पता नहीं। बहरहाल ये गीत हम आपको सुनाएं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। जहाँ तक मेरा ख्याल है, जैसे मैंने कहा, बर्फीली पहाड़ों में कश्मीर के ये शूट किया हुआ होगा। बहरहाल चलो कार्यक्रम हम आगे बढ़ाते हैं और पेश करते हैं ये गीत, क्या ख्याल है।

बांट लेंगे हम आधा आधा लता जी और अपन की किशोर कुमार फिल्म आजाद में से निकाले हैं और हमने पेश की बस सिर्फ आप ही के लिए शुभकामना के साथ। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है ये रफ़ी साहब की, ये रफ़ी साहब का ये गीत है जिसमें लता जी भी साथ दी है और फिल्म है हंसते जख्म। इस तरह से

बस आप ही के लिए शुभकामना के साथ। चलिए अगला गीत हम चला रहे हैं और वो ये है, इस तरह से ये डुएट है उन्हीं कौमी के साँच पर।

ظالم دل نے پھر یاد کیا۔ یہ او پی اسلام میوزک نہیں ہے، سونی اومی کا۔

0: रफ़ी साहब आयशा जी, ये हाँ दिल ने फिर याद का किया निकतिन से है सस्ते खा, ये फिल्म सोनी कोमी के साज पर हमने पेश की ओफर फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। क्या ख्याल है कर जमाया आपको ये सुनाऊं, वाह क्या बात है
1: सुंदर।

सुंदर भी लगती हूँ, अच्छी भी लगती हूँ, आ जा रे आ जा शरम। आपको सुनाया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, बहुत दिनों बाद शायद आप ये गीत सुनोगे, इस तरह से आ रहा है।

किसका रास्ता देखे, एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए हैं। ये शानदार गीत हमने पेश की हो फॉर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए आपका स्वागत करते हुए हम पेश कर रहे हैं ये ब्रोकन हार्ट सॉन्ग इस तरह से।

0: चला जाऊंगा दो अश्क बहा लूं, तो चलो रफ़ी साहब की आवाज़ में हम आपको सुनाए। चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, धमाकेदार गीत है। जी हाँ, चलो सुनते हैं क्या इसका नाम है, क्योंकि नाम बताने में झिझकता है।
1: सुनो, तुम्हारा असली नाम क्या है?
2: जी, मेरा असली नाम जॉनी।
1: और नकली?
2: नकली भी जॉनी।
1: इसके अलावा भी कोई नाम है?
2: जी हाँ, जानी। आपको ज्यादा पसंद है?

प्रेमी भक्तों, माता की चौथा रूप कुष्मांडा देवी आगे इस भजन के माध्यम से सुनिए।

रात्रि के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत पूजा महत्व के बारे में, घट स्थापन का क्या समय होगा, तो आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त व्रत पूजा महत्व के बारे में। आप सभी भक्तों को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता दुर्गा की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। प्रत्येक वर्ष जो कि नवरात्रि का व्रत 4 बार मनाया जाता है, 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में और 2 प्राकट्य नवरात्रि के रूप में। प्राकट्य नवरात्रि में जो कि चैत्र के महीने में और आश्विन के महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर के 9वीं तिथि तक माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है, और वहीं पर गुप्त नवरात्रि जो कि आषाढ़ के महीने में और माघ के महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के 9वीं तिथि तक माता 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ नवरात्रि का व्रत धारण करते हैं, तो माता दुर्गा की कृपा से उनके सभी प्रकार के दुख और कष्टों का नाश होता है, तथा माता अपने भक्तों के सभी प्रकार के मनोरथों की सिद्धि करती है। नवरात्रों के आरंभ में जो कि अमायुक्त प्रतिपदा अच्छी नहीं होती है। आरंभ में घट स्थापन के समय यदि चित्रा और वैधृति हो तो उनका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि चित्रा में धन का और वैधृति में पुत्र का नाश होता है। घट स्थापन समय जो कि प्रातः काल है, अतः उस दिन चित्रा या वैधृति रात्रि तक रहे और रात्रि में नवरात्रों का स्थापन या आरंभ होता नहीं, तो या तो वैधृत्यादि के आद्य 3 अंश त्याग कर 4थे अंश में करे, या मध्याह्न काल के समय अभिजीत मुहूर्त में स्थापन करे। स्मरण रहे कि देवी का आवाहन, प्रवेशन, नित्यार्चन और विसर्जन ये सब प्रातः काल में शुभ होता है, अतः उचित समय का अनुपयोग न होने दे। स्त्री हो या पुरुष, सबको नवरात्र करना चाहिए। यदि कारणवश स्वयं न कर सके तो प्रतिनिधि, पत्नी, पति, ज्येष्ठ पुत्र, सहोदर या ब्राह्मण द्वारा कराए। नवरात्र 9 रात्रि पूर्ण होने पर पूर्ण होता है, इसलिए यदि इतना समय न मिल पाए तो सामर्थ्य ना हो तो 7, 5, 3 या 1 दिन व्रत करे, और व्रत में भी उपवास, अयाचित, नक्त व्रत या 1 भुक्त हो, जो भी बन सके अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत को धारण करना चाहिए। चैत्र नवरात्रि में जो कि माता दुर्गा के 9 दिनों तक 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है, जैसे कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिता। इन 9 देवियों का जो कि नवरात्रि में 9 दिनों तक पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं घट स्थापन के शुभ मुहूर्त के बारे में। वर्ष 2024 चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ समय जो कि 8 अप्रैल 2024 दिन सोमवार रात्रि 11:52 और प्रतिपदा तिथि की जो समाप्ति है वह 9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार रात्रि 8:32 पे। तो शुद्ध रूप से सूर्योदय व्यापनी के अनुसार 9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार को चैत्र नवरात्रि घट स्थापन का कार्य किया जाएगा। 9 अप्रैल को जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा वह समय सुबह 4:31 से लेकर के सुबह 5:17 तक होगा। इस दिन योग जो कि अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 7:32 से अगले दिन सुबह 5:06 तक होगा। इन योग में पूजन आदि का कार्य करना जो कि बड़ा ही पुण्यफलदायी माना गया है। 9 अप्रैल को नक्षत्र जो कि रेवती नक्षत्र होगा सुबह 7:32 तक, उसके बाद अश्विनी नक्षत्र। इस दिन योग जो कि वैधृति योग होगा दोपहर 2:18 तक, उसके बाद विषकुंभ योग होगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय जो कि 9 अप्रैल को सुबह 11:34 से लेकर के दोपहर 12:24 तक अभिजीत मुहूर्त का समय होगा। राहु काल का समय जो कि दोपहर 3:09 से शाम 4:43 तक होगा। अब आइए जानते हैं घट स्थापन के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन सबसे अच्छा मुहूर्त जो है
वह मुहूर्त 9 अप्रैल को जो कि अभिजीत मुहूर्त का समय होगा, इस समय में घट स्थापन का कार्य संपन्न करे, जो कि सुबह 11:34 से दोपहर 12:24 तक घट स्थापन का विशेष मुहूर्त होगा। शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार जो समय है वह समय चर लाभ और अमृत, जो कि सुबह 8:50 से दोपहर 1:34 तक होगा। उसके बाद लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त का जो समय है वह समय शाम 7:43 से रात्रि 9:09 तक होगा। उसके बाद शुभ अमृत चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त, जो कि रात्रि 10:34 से रात्रि 2:50 तक होगा। घट स्थापन में जो कि खास करके चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग में घट स्थापन नहीं करना चाहिए, इस कारण से खास करके जितने भी भक्तजन घट स्थापन का कार्य करने वाले हैं वो सभी अभिजीत मुहूर्त में ही घट स्थापन का कार्य करें तो बड़ा ही पुण्यफलदायी होगा। चैत्र नवरात्रि के व्रत में जो कि आप चाहें तो 9 दिनों तक माता का पूरे विधि विधान के साथ फलाहार रह करके भी व्रत को धारण कर सकते हैं। आप चाहें तो दिन भर फलाहार का प्रयोग करके रात्रि में एक समय जो कि सेंधा नमक का प्रयोग करते हुए और गौ घृत का प्रयोग करते हुए भोजन ग्रहण कर सकते हैं, या आप चाहें तो सूर्यास्त होने से पहले ही फलाहार आदि का प्रयोग कर सकते हैं। आपकी जितनी भी सामर्थ्य हो, श्रद्धा हो, उसके अनुसार आप व्रत को धारण कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान माता का पूरे विधि विधान के साथ जो कि घट स्थापन करके गंध पुष्प धूप दीप आदि से माता का पूजन करना चाहिए, अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाना चाहिए, ऋतु फल आदि से माता का भोग लगाना चाहिए, उसके बाद जल से आचमनी करानी चाहिए, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करनी चाहिए और फिर श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए, दुर्गा चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इससे माता भगवती माता दुर्गा अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के दौरान जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, व्रत के दौरान व्रति को किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए और पूर्ण अपना मन माता भगवती माता दुर्गा के चरणों में लगानी चाहिए। इनका ध्यान भजन कीर्तन करते रहना चाहिए। इससे माता जगदम्बा दुर्गा अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होती हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देती हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो।

और कौन आए हैं तो नवरात्रि के उपलक्ष्य पर ये नवरात्रि माता का गीत हम आपको भजन आपको हम सुनाते हैं। चलो एक और सुना जाए।

देवी सर्वभूतेषु और ये माता का मंत्र दोस्तों आपको हम सुनाते हैं। अब वो है नवरात्रि के और पर तो हम चलते हैं बोलती चलो और शेरावाली के बोलती चलो।

और बोलती चलो शेरावाली की, और बोलते चलो हम चलते हैं शेरावाली के आरती की ओर दोस्तों, और आपको नवरात्रि का सॉन्ग हम सुनाएंगे। अब चलो आरती की ओर, नवरात्रि की माताजी के आरती की ओर।

गौरी। और दोस्तों दुर्गा माता की आरती सॉन्ग हम आप लोग को सुनाएंगे हैं नवरात्रि के ओर से। तो अगला गीत अगला भजन की ओर हम चलते हैं।

का ये भजन आप लोग को हम माता का हम सुनाते हैं। रेडियो फाहुन के तमाम डायरेक्सी कोलेगा साथी सबके ओर से आप सबको एक शुभ नवरात्रि होए, और आप जहां भी हो जिस हाल भी हो माता आपको और हर तरह की शक्ति प्रदान करे, आपकी मदद करे, आपके दुख निवारे इस नवरात्रि पर हमारे दोस्तों। तो आप लोगों को शुभ शुभ शुभ एक शुभ दिन हो। नवरात्रि जोंग यहाँ से हम शुरुआत फिर से करते हैं।

और तेरे दरबार में मैया खुशी तो जरूर मिलते हैं। और दोस्तों नवरात्रि का ये स्पेशल सॉन्ग हम आप लोग को सुनाते हैं और यानी हम अगले गीत की ओर बढ़ते हैं, यानी कि नवरात्रि सॉन्ग की ओर। नवरात्रि स्पेशल सॉन्ग हम आप लोग को सुनाते हैं।

और तेरी महिमा है अपरंपार माँ। और ये सब नवरात्रि स्पेशल सॉन्ग हम आपको सुनाते हैं और अगला भजन के ओर हम जाते हैं। वो एक गुजराती हैप्पी नवरात्रि जो है।

दुर्गा माता के और भवन जो है वो तो सदा प्यारे लगते हैं और खूब सजाए गए हैं। तो नवरात्रि स्पेशल सॉन्ग हम आप लोग को सुनाते हैं और जितने भक्त लोग हैं आप सबको हैप्पी हैप्पी नवरात्रि यहाँ से कहते हैं। अगला भजन की ओर हम चला जाए।

ये अम्बे माँ नवरात्रि स्पेशल सॉन्ग हम आपको सुनाते हैं हमारे दोस्तों। तो हम चलते हैं अगला भजन की ओर और वो क्या है आप लोग खुद ही सुनिए। ये एक माता का भजन है भोर बई दिन और आप आइए।

मेरे अम्बे और यानी कि स्पेशल नवरात्रि सॉन्ग आज हम आप लोग को सुनाते हैं। नवरात्रि के उपलक्ष्य पर हम सब का नौ दिन का और महा यानी कि नवरात्रि है, तो हम चलते हैं अगला भजन की ओर।

और कौन आए हैं तो नवरात्रि के, नवरात्रि के उपलक्ष्य पर ये नवरात्रि माता का गीत हम आपको, भजन आपको हम सुनाते हैं। चलो एक और सुना जाए।

देवी सर्वभूतेषु और ये माता का मंत्र दोस्तों आपको हम सुनाते हैं। अब वो है नवरात्रि के और पर तो हम चलते हैं बोलते चलो और शेरावाली के बोलते चलो।

और बोलती चलो, और बोलती चलो शेरावाली की, और बोलती चलो। हम चलते हैं शेरावाली के आरती की ओर दोस्तों, और आपको नवरात्रि का सॉन्ग हम सुनाएंगे। अब चलो आरती की ओर, नवरात्रि की माताजी के आरती की ओर।

और दोस्तों दुर्गा माता की आरती सॉन्ग हम आप लोग को सुनाएंगे हैं नवरात्रि की ओर से। तो अगला गीत अगला भजन की ओर हम चलते हैं।

नवरात्रि का ये भजन आप लोग को हम माता का हम सुनाते हैं। रेडियो फाहुन के तमाम डायरेक्सी कोलेगा साथी सबके ओर से आप सबको एक शुभ शौर शुभ नवरात्रि होए, और आप जहाँ भी हो जिस हाल भी हो माता आपको और हर तरह का ये शक्ति प्रदान करे, आपकी मदद करे, आपके दुख निवारे इस नवरात्रि पर। हमारे दोस्तों

भक्त वत्सला माता वैष्णो देवी सदा सबकी पुकार सुनती हैं। राजा चंद्रदेव पर टूटा दुख का पहाड़। पहाड़ों वाली माता ने राजा और उसकी पुत्री का दुख हर लिया। उनके वरदान से पुत्री का निष्प्राण सुहाग जीवित हो गया। पुत्री के व्रत से मां प्रसन्न हो गईं। राजा की श्रद्धा भक्ति अष्टभुजाधारी मां ने स्वीकार कर ली। वैष्णो माता का द्वार पावन द्वार है।

जद तो श्रीया घोषाल ने गाया है जागो रे मेरी मैया, मैया तो सदा जागा है, माता शेरावाली हमेशा जागता है, जागता रहता है। हम लोग के जागना चाहिए, हम लोग के मांगना चाहिए, माता शेरावाली के लिए बहुत ताकत है। मांग के तो देखिए कि हर एक चीज वहाँ से मिलते ही, माता रानी माता शेरावाली तो सब हमेशा जागते हैं, हम लोग के देखते हैं, जय जहाँ से देखते लेकिन हम लोग के देखते हैं। हम लोग के जागना चाहिए, जागो हमारे लोगों, और पुकारिए माता रानी के, नवरात्रि है नवरात्रि करिए, प्यार से करिए, दिल से करिए, और मांग के देख। माता रानी के घर में हर एक चीज़ है। मैं भी माता रानी से मांगता, हर एक इंसान के दुख दूर कर दिया जाए माता रानी। जो देश में हो रहा है, दुनिया में हो रहा है, होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी होना नहीं चाहिए, इस पर गौर किया जाए। माता रानी आप है दुनिया का माँ है, आप है देखने वाले बचाने वाले, हम लोग के आप ही है, और हर एक हम सब आपके चरण में हैं, और हमेशा हम लोग की देखभाल करना, यही मांगना है हमारा लोग, हमारे सुनने वाला। माता रानी सदा जागता रहता है। ठीक है, हम चलते हैं अरिजीत सिंह की तरफ और सुनते हैं नवरात्रि के एक और भजन।

नव चेहरा हम लोग के जानना चाहिए कि वो नव चेहरा क्या है, कौन सा कब अपना रूप बदल के आएगा माता रानी, कब माता रानी अपना रूप बदल के आएगा हमारा ज़िंदगी में, कौन सा रूप लेके आएगा। ये सच बात है हमारे सुनने वालों, इसमें ज़रूर विश्वास करना चाहिए। यही है, जो विश्वास करेगा वही जीतेगा। कहते हैं इस दुनिया में विश्वास एक ऐसा चीज़ है कि विश्वास करेंगे तो सच में है। और मान लें हमारा बात कि माता रानी के जो नवरात्रि है सच बात है, नवरात्रि करके देखना, नवरात्रि करना या न करना, विश्वास करना एक बहुत ही बड़ी बात है और नवरात्रि है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हर जगह पे मंदिर ही खुला है नवरात्रि के लिए, भोजन है, खाना है, पीना है, प्रसाद भी है, जाइए और वहाँ पूजा कीजिए, देखिए कैसे लोग माता रानी की पूजा करते हैं। मंगलवार हो चुका है दोस्तों, सुबह का प्रोग्राम है, हल्फ तीन हो चुका है, ये मैं बताना तो भूल गया था कि आज मंगलवार है। और घड़ी का सब देखा जाए तब हो चुका है हल्फ तीन, 13 अक्टूबर हो चुका है 2026 में, हमें 2 महीने और है तब हम चला जाएंगे 2027 में। ये जो साल है बहुत ही ख़राब बीता है, हर जगह पे दुख है, मातम है, बहुत सारे दुख और मातम इस साल में है। हर एक को बच के रहना चाहिए, अभी 2 महीने और है और नवरात्रि है, बस पूजा कीजिए माता रानी से, यही दुआ मांगिए, यही मांगिए, यही पूजा में मांगिए कि हर एक जगह पे अच्छा हो जाए, जहाँ पे दुख है, जहाँ प्रॉब्लम है, मातम है, हर जगह पे शांत हो जाए। सहन शक्ति दे माँ, इन सबको अपने दुख को सहने के लिए इतना सहन शक्ति दे, हम लोग के इंसान की ज़रूरत है। जो आपके दरबार में है, जो आपके चरण में बैठ के पूजा करते हैं, उसका पूजा स्वीकार कीजिए माता रानी, यही मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ। माँ है, हर लोग माता रानी कहते हैं, माँ शेरावाली है, और ये भी मैं मांगता हूँ जो आपके चरण में बैठ के पूजा कर रहे हैं, उन पूजा को, पुकार को सुनिए और उनको ज़रूर मदद कीजिए। दुनिया में प्रॉब्लम जो है उसे थोड़ा दूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, हम चलते ही भजन लेके श्रेया घोषाल की आवाज़ में।

जी हाँ जी हाँ दोस्तों, ये जो श्रृंगार किया जा रहा है इस वक्त दुनिया में हर एक माँ लोग है, जैसे माता रानी है, हर एक माँ माता रानी होता है और श्रृंगार यहीं से निकला है। माता रानी ने दिखाया है क्या श्रृंगार है, क्लियर है, साड़ी है पहनने के लिए, लाल है, हर एक चीज वहीं से आया है दोस्तों। ठीक है, हम चलते हैं। हमारा बहन भी हमारा दीदी है, प्रोग्राम को बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे अभी तार में कॉल किया था, कुछ बातें हुए हैं। सवित्री भोला सिंह, जो हम सदा दीदी कहते हैं, आज भी कॉल किया है, बहुत अच्छा प्रोग्राम लगते हैं, बहुत बहुत बहुत बहुत हम लोग के बहुत आशीर्वाद दिया है, फाउन हिंदुस्तान हिंदुस्तानी रेडियो के बहुत आशीर्वाद दिया है। और वो भी हर एक माँ को हम इसी नज़र से देखते हैं, वो भी माता रानी है। नौ रोज का जो नवरात्रि है हर एक माँ के लिए ही जो माँ है। और हमारा बहन जो है इस सविती दीदी, एक भजन मांग लिया है, एक भजन हम चलाएँगे उसके नाम, यह भजन जो अभी हम रखेंगे वो मांग किया है, हर एक माँ के लिए जो माता रानी है, माँ शेरावाली है, हर एक माँ में वही ताकत है जो माँ शेरावाली के है। और बहुत बहुत धन्यवाद है दीदी कि आप हर एक माँ के लिए, हर एक के लिए इस भजन को मांग किया है। जो मैं अभी सुनाऊंगा वो सवित्री दीदी का मांग है, हर एक जो प्रोग्राम को सुनते हैं, अपना नवरात्रि को रखा है, दिन और रात पूजा कर सकते हैं, नव रात्रि है, रात दिन से आप पूजा कर सकते हैं। और सभी दीदी ने हर एक माँ के लिए मांगा है, सच बात है, ये जो माँ शेरावाली है हर एक माँ में है, हर एक माँ में ये है, आज हर एक माँ का ये नवरात्रि है। और ये भजन मैं चलाऊंगा नामस फाउन हिंदुस्तान रेडियो स्पेशल, हर एक माँ के लिए जो सभी दीदी ने मांग किया है।

जय हाँ दोस्तों, जय माता जी। अभी मैंने कहा था सविती दीदी ने इस गाने को मांग किया हर एक माँ के लिए। हर एक माँ में माता रानी है, माता शेरावाली हर एक माँ में है। जैसे शेरावाली हम लोग के पोसते हैं, देखते हैं, देखभाल करते, उसे हम लोग के माँ भी हम लोग के पोस के बड़ा किया है। हर एक माँ में माँ शेरावाली बसते हैं। और सविती दीदी, सविती भोला सिंह जो हम दीदी कहते हैं, हर एक माँ के लिए इस गाने को, इस भजन को मांग किया था। सविती दीदी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हर एक माँ के लिए इस भजन को मांग किया है। और ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि अनामस फाहुन के बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं कि हम लोग इस प्रोग्राम को करते हैं और उसे फाहुन सुनने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, हम आगे चलते ही एक बार फिर से श्रिया घोषाल के लिए कि माता रानी के लिए कुछ और बोस का कहते हैं। इसे दिल से सुनिए, ध्यान से सुनिए क्या गा रहा है। और सच में गा रहा है, सच बात है। मानत देव न मानत पत्थर, हम लोग को मानना चाहिए। ये टाइम है, ये वक्त है, बहुत बहुत बहुत बुरा बुरा चीज़ हो रहा है। हम लोग जो इसमें विश्वास करेंगे तो कम बुरा चीज़ होंगे, हम लोग से भी कम, बहुत कम चीज़ होगी जो सिर्फ बढ़िया चीज़ हम लोग के करना चाहिए इस दुनिया में।

जी हाँ, हमारे सुनने वाले नवरात्रि का प्रोग्राम जो है, एक भजन और हम चलाएंगे नवरात्रि के लिए, उसके बाद हम चलाएंगे कुछ हिले मिले जुले गीत आप लोग के हम जरूर सुनाएंगे। दो हफ्ते में नहीं थी, दो हफ्ते बाद में आज फिर से हूँ प्रोग्राम पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग के इस प्रोग्राम जरूर पसंद आएगा। ठीक है दोस्तों, हम चलते एक भजन की तरफ और उसके बाद हम चलाएंगे कुछ न्यूज़ है, बयान है, रिक्लाम है, उसके बाद हम प्रोग्राम में आएंगे फिर से। कुछ गाने हम आप लोग के सुनाने वाले हैं।

0: जी हमारे दोस्तों, ये था एक आखिरी नवरात्रि की गाना। अभी आप सुन रहे थे कि लाल कपड़े पहन के माता रानी शेर पे सवारी करते थे। सच बात है, सच बात है, शेर पे सवारी करने वाला सिर्फ एक है और वो है माता रानी। चलो मिलके कहते हैं जय माता रानी। आप सब जानते हैं हर एक मंदिर का दरवाज़ा खुला है, आप जा सकते हैं। इधर इज वेलकम इन मंदिर, जाइए, वहाँ मीठा प्रसाद मिलते हैं, भोजन भी मिलेगा और देखना कैसे माता रानी के पूजा लोग करते हैं। हम भी जाएंगे मंदिर, आज नहीं तो कल मैं भी मंदिर को जाऊंगा, देखना चाहता हूं एक बार फिर से। काफ़ी दिन हो चुका कि मैं नहीं देखा हूं इसका पूजा कैसे हो रहा है। माता रानी से भी मैं पूजा करना चाहता हूं, लेकिन मंदिर में देखना चाहता हूं। जाइए, वेलकम है, इट इज़ वेलकम। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम नवरात्रि भजन का प्रोग्राम खत्म हो गया है। अब हम चलाएंगे न्यूज़ और कुछ रख रहा हूँ, उसके बाद हम आ रहे हैं कुछ हिले मिले गाने से, आप लोग के ज़रूर खुश रखूँगा। 12 बजे तक हमारा तुम्हारा साथ रहेगा, उसके बाद फिर मिलेंगे शुक्रवार को।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07-36-523-2047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai, jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Bij meerdere Albert Heijn-vestigingen zijn vanochtend lege schappen zichtbaar als gevolg van een cyberincident waar moederbedrijf Ahold Delhaize sinds zondagmiddag mee kampt. Maandag kwamen er geen vrachtwagens. Vooral de vers- en groenteafdelingen zijn getroffen. Winkels in Utrecht, Rotterdam en Tilburg waren nog goed bevoorraad. In Duitsland zijn 2 Turkse staatsburgers gearresteerd op het treinstation van Nürtingen vlakbij Stuttgart. Ze worden verdacht van brandstichting bij een Starlink-installatie van staatsbedrijf Exatel in de Poolse regio Mozavië. 3 weken geleden. Premier Tusk gelooft dat Rusland achter deze hybride oorlogsvoering zit. Huizenkopers kunnen volgend jaar een hypotheek met nationale hypotheekgarantie afsluiten tot €500.000, €30.000 meer dan nu. Bij verduurzaming is het maximumbedrag €530.000. De NAG laat klanten bij woningen met energielabel E, F of G standaard €20.000 extra bijlenen voor energiebesparende maatregelen, tenzij de woningwaarde te laag is. Meta erkent dat camerabrillen worden gebruikt voor stiekeme opnames, maar haalt ze niet van de markt volgens topman Alex Himmel. Stichtingen Off Limits en de Firewall spannen een kort geding aan. Ook de Consumentenbond eist verwijdering omdat de brillen bijzondere persoonsgegevens verzamelen over politieke opvattingen, religie en gezondheid die niet zomaar mogen worden verwerkt. En dan het weer. Vanochtend is er plaatselijk een lichte regenbui mogelijk. De dag begint mild, aangezien de temperatuur al vroeg ruimschoots boven de 10 graden uitkomen. Er waait een zuidelijke wind die in de loop van de ochtend geleidelijk in kracht kan toenemen. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Muziek en informatie. bij Vahon Hindustani Radio.
0: Ja, दोस्तों ये था हमारा न्यूज़ और कुछ रिक्लामे जो अभी आप सुन रहे थे. ठीक है दोस्तों, हर एक कॉन्फ्रेंस कहते ही आज मंगलवार है, एक शुभ सुबह हो. मौसम की तरफ देखा जाए तो बारिश का मौसम है. हर एक चीज़ बच के करना, बचा के करना. मौसम बढ़िया नहीं है. जो लॉकडाउन पे है, अपना नौकरी पे है, बच के हर एक चीज़ को करना. जहाँ पे दुख है, जहाँ मातम है, हमारा पूरा टीम फाहुन आप लोग के दुख सुख में शामिल है. और जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे, वहाँ तक हमारा ढेर सारा मोहब्बत पहुँचे, पैगाम पहुँचे, ढेर सारा प्यार पहुँचे. ठीक है दोस्तों, हम कुछ प्रोग्राम बना करके लाए हैं, कुछ गाने नए गाने हैं आई के है. और एक गाना जो गाया गया है, यहाँ पे नाम नहीं लिखा है इस गाने को कौन गाया है. आई एक ऐसा चीज़ है, वो लोग बना देते हैं गाने को और ऐसे बनाते हैं कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है और नाम नहीं लिखते हैं ये गाना कौन गाया है. लेकिन ये गाना में कुछ दर्द है, बहुत ही बड़ा मतलब वाला गाना है. अगर आप सुनेंगे और सोचेंगे तो आप समझ जाएंगे ये गाना कौन सा गाना है, कैसा गाना है. और एक बहुत ही अच्छी गाना है, लोग जो समझ जाते हैं इसे ज़िंदगी समझ जाएंगे. अगर आप इस गाने को समझ जाते हैं, हर चीज़ आप कभी पर हर एक चीज़ बढ़िया ही करेंगे. लोग को इस गाने को सुनना ज़रूरी है और काफ़ी अच्छी गाने हैं. कहते हैं इसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं, कुछ सबसे जो गाया गया है उसे कहता है समझौया के मौत. अगर आप समझ जाते हैं तो ज़िंदगी संवर जाएंगे, दुनिया संवर जाएंगे.

0: इस शाश्वत में समा जाऊं, जो जन्म मरण को देख रहा उस शाश्वत में समा जाऊं।
1: जय दोस्तों, भी आप सुन रहे थे ना मैं मन हूँ ना मैं तन हूँ। ये गाना जो गाया गया है इस वक्त इंडिया से, काफ़ी अच्छे गाने हैं। इसका जो मतलब है काफ़ी अच्छे सबसे अच्छे अच्छे वर्द कहते हैं, हर एक वर्द में दम है। कहते हैं ना मैं तन हूँ ना मैं मन हूँ, तो क्या हूँ मैं। अगर इस गाने को आप ध्यान से सुनेंगे तो काफ़ी चीज़ मिलेंगे इसमें जानने के, पहचानने के लिए और सुनने के लिए। ठीक है दोस्तों, हम चलेंगे प्रोग्राम को, हम ले चलेंगे क्योंकि 12 बजे तक हमारा तुम्हारा साथ रहेगा। हम चलेंगे कुछ न्यू सॉन्ग्स में और 11 बजे से 12 बजे तक हम चलाएंगे कुछ पुराने गाने हम चलाएंगे। आप सब जानते हैं हमारा प्रोग्राम में सवाल और जवाब का प्रोग्राम है। मैं सवाल करूंगा, आप ऐप द्वारा मुझे ऐप कर सकते हैं। मेरा ऐप तार का नंबर है 9643 8 0 8 3 3 2। मैं एक बार फिर से गौरा रहा हूँ, 9643 8 0 8 3 3 2। अब मैं सवाल करूंगा, आप ध्यान से सुनिए। जो प्रोग्राम को सुनते, काफ़ी लोग हैं जो प्रोग्राम को सुनते हैं इस वक्त, तो इस सवाल को गौर से सुनिए। ये जो जहल है इंडिया में, जेल है, जहल है, जहां लोग कुछ करते हैं तब जेल में जाते हैं और गुनाह करते हैं, जहल में जाते हैं, उसे लोग कहते हैं हवालात। कह खतिन इंडिया में जहल के सब हवालात बोले है, कौन ची बा ऐसन के सब, कौन ची सबन हुआ पे पावे है जहल में, तो ओका नाम सबर बा हवालात। अगर आप इसको सही जवाब देंगे, हमेशा की तरह आज भी आप सब एक गाने को मांग सकते हैं। क्यों इंडिया में जहल को लोग कहते हैं, जेल को कहते हैं हवालात। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा सवाल। अगर आप सही जवाब को देंगे, क्यों नहीं, शुक्रवार को आपको गाना हम ज़रूर चलाएंगे। आज हम फरमाइशें नहीं चलाएंगे, जो फरमाइशें दो हफ्ते मैं नहीं हूँ था, मैं जानता हूँ किसका किसका फरमाइश है। अभी मैं देखूँगा तो एक घंटे में उसका फरमाइश चलाऊँगा 11 बजे से 12 बजे तक। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए हम चलाएंगे कुछ न्यू सॉन्ग्स, हम ले चलते हैं न्यू सॉन्ग्स 2026 वाला। कैसा ये बेखुदी है सनम,

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे क्या गाना, क्या अंदाज में इस गाने को गाया गया है। ठीक है दोस्तों, हम चलते ही आगे 2026 का एक न्यू सॉन्ग से, और मैं आप लोग को सुनाना चाहता हूँ अनुराग इश्क तेरा, और एक कंपोजर किया गया है प्रकाश जवाहर, और इसका लाइरिक जो है प्रकाश सिंह है, म्यूजिक भी है प्रकाश सिंह, एक नया कलाकार है, एक नया म्यूजिकांत है, एक नया लाइरिक्स लिखने वाला है जो इस वक्त इंडिया में काफी हलचल मचा रखा है। हम आप लोग सुनाते हैं, हम सब मिल के सुनेंगे।

जी हाँ दोस्तों, मूवी का नाम है अधूरा इश्क तेरा, आर्यन खान और रश्मिका इसमें काम किया है। और क्या गाना है यार, म्यूजिक कंपोजर जो किया गया है वो प्रकाश जवाहर है और लाइरिक से प्रकाश सिंह, म्यूजिक प्रकाश सिंह, मिक्स मास्टर प्रकाश रावत और प्रकाश जवाहर का लेबल लग चुका है, काफ़ी हलचल मचा चुका है इस म्यूजिक में इंडिया में दोस्त। ठीक है, हम चलते आगे। तेरा नाम, तेरा नाम मूवी, तेरा नाम का एक गाना है, काफ़ी हलचल मचा रखा है ये भी इंडिया में।

जी हाँ दोस्तों, तेरा नाम अभी आप सुन रहे थे। न्यू सिस्टम का है, न्यू 2026 का ये गाना है और काफ़ी हलचल मचा रखा है इस गाने ने। कहते हैं लव द लव फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप सब चुन है और ये द लव वाली गाना है। गीत हो ऐसा 2026 का है और काफ़ी हलचल मचा रखा है इस गाने को। इस गाने ने इंडिया में, दुनिया भर में, जहाँ जहाँ हिंदुस्तान रहते हैं, काफ़ी हलचल मचा रखा है। हम आप लोग के लिए चलते हैं 2026 में, जिसमें इमरान हाशमी काम किया है और देखा जाए ये गाना है आई जिंदगी। सागर बैरागी का ये जो गाया गया है, सागर बैरागी है, कंपोजर सागर बैरागी, लाइरिक्स सागर बैरागी, म्यूजिक सागर बैरागी, मिक्स मास्टर सागर बैरागी, लेबल किया गया सागर बैरागी और प्रोडक्शन सागर बैरागी। ये कौन सा चीज़ है भाई, आप हर एक चीज़ में आप ही है और ये भी काफ़ी हलचल मचा रखा है, काफ़ी नाम को कमा रहा है इंडिया में गाने और बजाने में और गाने में भी। क्या आवाज़, क्या अंदाज से ये गाने को गाता है, हम आप लोग के सुनाने चाहता। द न्यू सॉन्ग्स 2026 का है आई जिंदगी।

ये सिंगर जागर बैरागी है, ये काफ़ी हलचल मचा रखा है, हाहाकार मचा रखा है इंडिया में, और काफ़ी अच्छा गाते ही, क्या आवाज़ है, क्या म्यूज़िक, ये जितना चीज़ है ये खुद ही किया है इस गाने में। ठीक है दोस्तों, हम चलते ही 2026 में अब आप को ले जाते हैं इश करते है जन्म। इसका कंपोजर जो है, सिंगर कंपोजर वो है सागर भाई रागी, लाइरिक्स भी है सागर भाई रागी जीनेश। चलो हम आपको सुनाते हैं, और आप सब चुन है दैफग्री लव फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पे। मैं हूँ 12 बजे तक आपके साथ अनिल जारजू, जो आपके खिदमत में है। 2 हफ्ते मैं नहीं था, अब फिर मैं आ गया हूँ वापस। लो मैं आ गया कहते हैं ना, इसमें कहते हैं लो मैं आ गया। और चलो आपको सुनाते हैं इश्क करते हैं सनम।

जी हाँ दोस्तों, इश्क करते ही सनम अभी आप सुने थे, 2026 का गाया हुआ गाना है और जो काफ़ी हलचल मचा रखा है दुनिया भर पे। जहाँ जहाँ हमारा हिंदुस्तानी भाई लोग रहता है वहाँ वहाँ पे ये गीत बहुत ही सुंदर, बहुत ही ढंग से, बहुत ही अच्छा गाना को गाया गया है। ठीक है दोस्तों, हम चलेंगे क्योंकि मैं देखता हूँ, मैंने कहा था 11 बजे से 12 बजे तक हम फरमाइश चलाएँगे, लेकिन नहीं, मैं फरमाइश से जो सही जवाब को दिया है मैं फरमाइश अब ही चलाऊंगा, क्योंकि देखा जाए तो काफ़ी लोग हैं, मैं नहीं सोचता हूं कि मैं हर एक के फरमाइशें सुना सकूंगा। याद रखिए सवित्री भोला सिंह की एक फरमाइश मुझे सुनाना है। बेया है जो प्रोग्राम को सुनते हैं, रामोन फिंक है जिसका फरमाइश हम सुनाएंगे, ममता है जर्मन से जिसका मैं फरमाइश सुनाऊंगा, अंद्रेई है जिसका फरमाइश मैं सुनाऊँगा, और देखा जाए तो यहाँ पे वीरेन भी है अलमेरा से, उस जिसका फरमाइश मुझे सुनाना है जिसका गाना सही जवाब दिया है, और सवित्री बदल है। अभी दो लोग और है, 10 गाने हम फरमाइश में सुनाएंगे, उसके बाद प्रोग्राम ख़त्म हो जाएंगे। फिर शुक्रवार के हम फरमाइश है, जो सही जवाब को देगा हम उसका फरमाइश ज़रूर पूरा करेंगे। चलो हम ले चलते हैं सवित्री भोला सिंह जिसे हम दीदी कहते हैं, हमारा कराओके टीम में गाना गाते हैं टेक अ चांस का को फरमाइश में, और सही जवाब को दिया था और मांग भी किया है, एक अच्छा भजन है, माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, हर एक के लिए, अपने आप के लिए और हर एक के लिए इस गाने को मांग किया है। सवित्री दीदी आपका गाना हम आप तक पहुँचाते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं, जैसे आपने कहा है वैसे मैंने कहा है, हर एक के लिए भूल मत जाना, हम सब नवरात्रि में है, जय माता जी बोलने के लिए मत भूलना, हे शेरा माँ, यही है माँ जो हम लोग के हर एक चीज़ से बचाएगा। और सवित्री दीदी ने माँ मुझे अपने आंचल में छुपा लो क्या गाना को मांगा है। मंगलवार है, सुबह का प्रोग्राम है, अभी तक क्वाथ फॉर एलफ हो चुका है, हम फरमाइशें अब चलाएंगे।

जदतमा मुझे अपने आंचल में छुपा लो सवित्री। भोला सिंह जो प्रोग्राम को सुनते हैं सदा पसंद भी करते हैं और भाई बहन का नाता हमारा करो फरमासी में गाने को गाता है। बहुत बहुत धन्यवाद है दीदी क्या प्रोग्राम को सुनते ही और ये गाने को मांग क्या है। ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों हम चलते हैं आगे, हम ले चलेंगे आगे मफरव बेया जो प्रोग्राम को सुनते ही और मांग क्या है। सब प्यार के बातें करते ही कभी प्यार में धोखा खा लिया है मफरव बेया तो समर जा भी से तो फिर प्यार के बातें हम सुनेंगे। आप जो गाने को मांगा है जाने तुम्हारा भाई तो भाई बैठे थोड़ा ख़राब कर लेता लंठाई चाहिए। ठीक है सवित्री के गाना मैंने भी सुना दिया और मफरो भैया बहुत बहुत अच्छी गाने को मांग किया। सब प्यार के बातें करते ही पर करना आता नहीं है देखा जाए मूवी मतलबी दुनिया नहीं करती। इन शस्त्र का है गाने वाला है मुकेश और लाइरिक से रमेश गुप्ता। चलो हम सुनाते हैं आपके गाना, हम सही जवाब को दिया भैया और सही गाने को मांगा है। आपका नाम करते ही आपके घर तक हम पहुंचाते हैं, आप प्रोग्राम को सुनते हैं पसंद भी करते हैं और ये गाना भैया के नाम है। अगले गाने मैं तैयार कर दिया हूँ रामोन फिंक के लिए, इसके बाद रामोन फिंक का गाना आएगा।

जहाँ दोस्तों भी आप सो रहे थे सब प्यार के बातें करते हैं पर करता आता नहीं, मूवी मतलब ही दुनिया नहीं कहती, ईनन सस्तक का है मुकेश की आवाज़ अभी आप सो रहे थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये था मफरव बेयादनाक शहर से प्रोग्राम को सुनते ही पसंद भी करते हैं, सही जवाब भी सही गाने को मांग किया है और बहुत बहुत धन्यवाद है मफरव भैया। ऐसे ही प्रोग्राम को सुनते रहना, हमारा प्रोग्राम को सुनते रहना, रेडियो फाहुन को सुनते रहना, क्योंकि आप चुन हैं द एवरग्रीन लव फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन हैं। दराग शहर से हम प्रोग्राम को करते ही जहाँ पे सरसराहट हवा चल रहा है, पानी के किनारे है, लोग कटिया लगाते हैं, खाना पक रहा है, फेगताइज खाना है, कढ़ी पक रहा है, आम डार के, जीरा डार के और आलू तैकारी पक रहा है, लव बोट शांता लव बोट पे खाना पक रहा है, अभी हम सब खाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम चलेंगे इपम्बर भाई रामन रामन फिंक जो सही जवाब को दिया और मांग किया है मुकेश का एक गाना है, और देखा जाए इस गाने की तो रात और दिन दिया जले मांग किया है, काफ़ी अच्छे गाने को मांगा है, रात और दिन दिया जले मुकेश की आवाज़ है, शंकर जय किशन का म्यूजिक और लायरिक्स है।

0: जी हाँ दोस्तों, रात और दिन दिया जले मुकेश की आवाज़ थी, शंकर जय किशन का म्यूजिक और लाइरिक्स था, और मांग किया था रामन इपम वृक्ष से जो करो कभी करते ही लोग जाते करो को करने के लिए वहाँ पे करो का मास्टर है। ठीक है भाई रामन, आप प्रोग्राम को सुनते ही सही गाने को मांग किया है, सुबह का प्रोग्राम है, देखा जाए 24 LF हो चुका है दोस्तों। धन्यवाद भाई फिंक, भाई रामन आप प्रोग्राम को सुनते हैं, भाई जैसा भाई से बड़ा है और प्रोग्राम को सुनते हैं, पसंद भी करते हैं और आज भी गाने को मांग किया है, बहुत बहुत धन्यवाद हो भाई रामन, ऐसे ही प्रोग्राम को सुनते रहना। ठीक है दोस्तों, हम चलते न्यूज़ और रेखलाम की तरफ, उसके बाद हम यूं गया यूं आया आपके साथ हम रहेंगे एक घंटे और। हाँ जी हाँ, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी हो गया है इसमें और हम चलाएंगे जरूर ये न्यूज़ को, हम चलाएंगे आपके लिए।
1: रामसूत वकालत का काम करता है, जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B, Delft meer, telefoonnummer 015 21.

जी दोस्तों, म्यूजिक हिमेश रेशमिया, लाइरिक्स से समीर और गाने वाले हैं अलका याग्निक कुमार जानू, फिल्म में काम किया है अभिषेक बच्चन और मांग किया है जर्मन से ममता, इस गाने को मांग किया है सही जवाब पे, सही गाने को मांगा है हम, मुझे भी तब बैठे थे हिल गया इस गाने पे, यार क्या गाना है, क्या गाना मांग किया है ममता, बहुत ही अच्छी गाना है, ऐसे ही चुन रहना हमारे रेडियो पे और सुनते रहना और पसंद भी करते, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जर्मन से कहते डांक शैन ऑफ विदर शैन, फिर मिलेंगे शुक्रवार के और हम प्रोग्राम को चलाते हैं, आगे चलेंगे। अब हमारा गाना है जो वो है आंद्रे रामध्यान सिंह, जो हमेशा की तरह आज भी एक गाना को मांग किया है सही जवाब पे, और ये बहुत ही पुराना गाना है, मूवी कोहिनूर, जरा मन के कंवरिया खोल, म्यूजिक है नवजाद, लाइरिक से शकील बतायुनी और गाने वाले है पद्मश्री मोहम्मद रफी, और मांगने वाला है हमारा भाई जो हमारे साथ गाना गाते हैं कर को फरमासी में, और काफी अच्छे गाने को मांग किया है आंद्रे रामध्यान सिंह, जो इस गाने को मांग किया, हमेशा पुराने पुराने इसी से गाना मांगते हैं कि जी खुश हो जाते हैं, हम मिलकर सुनेंगे, काफ़ी लोग हैं जो प्रोग्राम को सुनते हैं और ऐसे सुनते हैं ना, काफ़ी अच्छे गाने हैं, जरा मन के कमरिया खोल।

जी हाँ दोस्तों, जरा मन की केमरिया खोल सैया तेरी द्वारे खड़े, और अंद्रे रामधियान सिंह इस गाने को मांग किया, सही जवाब को दिया है, और काफ़ी पुराना गाना है जो मांग किया है, हमेशा पुराना पुराना गाना मांगते ही और लोग बहुत खुश हो जाते हैं सुनने के लिए। भाई मेस्टर अंद्रे, आप हमारा भाई से बड़ा है और हमारा साथ करो करतीब में गाना गाते हैं, करो को फॉर मत्सी में एक बहुत ही बढ़िया कलाकार है और हमेशा अच्छी अच्छी गाने को मांगता है, आज भी ऐसा गाने को मांगा है कि जी खुश हो गया है, ऐप पे आ गया मेरा ऐप पे कि क्या गाना आपने मांगा है। ठीक है भाई अंद्रे, आप प्रोग्राम को सुनते पसंद करते हैं, ऐसे ही प्रोग्राम को सुनते रहना। अब मैं ऐप को क्लोज कर दिया है, काफ़ी लोग हो चुका है इतना लोग, ठीक है अगले आने वाले फ्राइडा को हम आपके फरमाइश से पूरा करेंगे, आज के लिए ठीक है काफ़ी लोग हो चुका है, हम अपना ऐप को क्लोज कर दिया है, अब मुझे और कोई ऐप नहीं कर सकेंगे। इसके बाद हम ऐप खोलेंगे और जो सवाल मैंने किया था कि इंडिया में जहल के कहकर सब हवालात बोले हैं, उस पे मुझे सही जवाब को देना। अभी हम 12 बजे के बाद हमारा ऐप खुल जाएंगे शुक्रवार के लिए, जो सही जवाब पे सही सवाल पे सही जवाब देगा उसके गानों को हम यूज़ करेंगे। चलो दोस्तों, हम ये बताना चाहते हैं, हम फरमाइश चलाएंगे वीरेन सारजू जो अलमेरा से प्रोग्राम को सुनते हैं, और उसके बाद हम चलाएंगे सवित्री बदल के, ऐसे हम चलाएंगे प्रोग्राम, बोल के सुनाते हैं कि आप तैयार रहना प्रोग्राम को सुनने के लिए। चलो हम चलते हैं अलमेरा की तरफ, जहाँ वीरेन सारजू प्रोग्राम को सुनते हैं, सही जवाब को दिया है और मांग क्या है, तेरे मेरे रिश्ता पुराना, देखा जाए मूवी आवारापन है 2007 के, तो ऐसे सही फका ये प्रोग्राम है। हिमराम हसमी इस फिल्म में काम किया है, मुस्तफ़ा शहीद, और देखा जाए इसका जो म्यूज़िक बजाया गया है प्रीतम जो इस म्यूजिक को बजाया है। वीरेन सारजू अलमेरा से प्रोग्राम को सुनता, सही जवाब को दिया है और प्रोग्राम को सुनता है, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन, डांके वेल अच्छे हम लोग के सुनते हैं और पसंद भी करते हैं, आपके गाना हम आपके घर तक पहुंचाते हैं।

अरे उठो नहीं, उठो नहीं, उठो नहीं, लेटे रहो, लेटे रहो। जो भी हुआ लेकिन तुम यहां बिल्कुल सुरक्षित हो, लेटे रहो।

देखिए माँ, मेरे लोग उस लड़के को आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेंगे। तेरे लिए बेहतर है कि तू खुद बता दे। अरे आप, तेरी यही खामोशी तेरी सबसे बड़ी दुश्मन बनेगी। मैं तुझे उठाकर उसी जगह वापस भेज दूंगा जहां से खरीद कर लाया था एक दिन। तेरी सही जगह वही है, वहां आशिकों की कमी नहीं पड़ेगी तुझे। एक ढूंढेगी हजार मिलेंगे, और वो सब मिलके तेरा इतनी बार इस्तेमाल करेंगे कि दोबारा किसी और से इश्क करने के लायक नहीं रहेगी तू। आज से तू उसी दिन का इंतजार कर।

मैं अल्लाह से कह रही थी कि तुम्हारे अंदर ईमान जगाए, तुम्हें नास्तिक से आस्तिक बनाए। चाहे तुम उसे जिस तरह जिस शक्ल में मानो, मगर मानो जरूर। मैं तो ये चाहती हूँ कि हम दोनों मरने के बाद भी मिले जन्नत में, और जन्नत में वही लोग मिलते हैं जो खुदा को मानते हैं।

जी हाँ दोस्तों, मूवी आवारापन 2007 का है और गाने वाले हैं मुस्तफा शाहिद। ठीक है दोस्तों, वीरेन अलमेरा से प्रोग्राम को सुनते ही और इस गाने को मांग किया था मैंने, आपको गाना अपने घर तक पहुंचा दिया, कानों तक पहुंचा दिया। वीरेन बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेल कि तुम प्रोग्राम को सुने हैं और इसे पसंद करते हैं, थैंक यू वेल, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हो। ठीक है दोस्तों, हम चलते ही फोर्स कोतन की तरफ जहाँ पे शांता सार्जू को हबीर प्रोग्राम को सुनते हैं और आज एक गाने को मांग किया है, देखा जाए। नहीं, इसके बाद शांता को हबीर के रहेंगे। अब हम चलेंगे चोरी चोरी दिल तेरा चुराया, सावित्री बदल के तरफ, सावित्री बदल के तरफ। इसके बाद शांता सार्जू को हबीर जो फोर्स कोतन से प्रोग्राम को सुनते ही उसका फरमाइश आएंगे। इसके बाद तैयार रहना सुनने के लिए और तब तक के लिए हम चलते हैं सावित्री बदल जो दिनांक से प्रोग्राम को सुनते हैं और काफ़ी अच्छे गाने को मांग किया है, चोरी चोरी दिल तेरा चुराया है।

जी हाँ, जैसे भी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और कुमार जानू की आवाज, और मांग किया था सवित्री बदल दरहाक शहर से, चोरी चोरी दिल तेरा चुराया है, और सही जवाब पे सही गाने को मांग किया है सवित्री बदल। बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम को सुनते हैं, फाहुन को सुनते हैं, हम लोग को सुनते हैं और पसंद करते हैं। आप गाने को मांग किया था, हमने गाने आपके कानों तक पहुंचा दिया है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी वक्त हम नहीं लेंगे क्योंकि काफ़ी लोग हैं। हम सोचते हैं 12 बजे तक हम इस फरमाइशें पूरा कर देंगे। हमारा लाइन तो बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी एक और आ गया है, हमारा दोस्त है रुदि त्वेई है, रुदि गोली जो प्रोग्राम को भी सुनते हैं, वो भी गाने को मांग किया है। ठीक है, हम चलते हैं फोर्स को उत्तन, जहां शांता सार्जु को हबीर प्रोग्राम को सुनते हैं, और उसका जो हसैन है, उसका जो सास है गुजर गया है, शुक्रवार के फ्राइडा के ऊपर पूरा काम होगा सभी कुछ, और वो एक गाने को मांग किया है, परिवार गम में है। हफ्ता मन से फाहौन हिंदुस्तानी रेडियो से हम आप लोग के कौंदले करते हैं, सहन शक्ति देते हैं भगवान से कि आप लोग हर एक चीज़ को सह सकते हैं, यही मांग है भगवान से, इतना ही ताकत दे कि आप लोग सब चीज़ आप लोग सह सकते हैं और कर सकते हैं। रेमन भी है, रेमन को हाबीर भी है, हम उसे भी कहते हैं कि भगवान आपको इतना सहन शक्ति दे कि आप सब कुछ सह सकते हैं। माँ दुनिया में चला गया है, माँ नहीं है, शुक्रवार को उसको सभी कुछ शुक्रवार को होगी, बखराफ होगी या जलेगी, उस सुख फ्राइडे के ऊपर पूरा चीज़ होगा। और हमारा

जी हाँ दोस्तों, मूवी अमन 1967 का है और पद्मश्री मोहम्मद रफी का आवाज थे। शांता सार्जू को हबीब जफर स्कूटन से इस गाने को मांग किया है और रेमन भी, जिसका माँ अब दुनिया नहीं है। जहाँ भी रहे, जिस हाल में रहे, जैसे रहे, बस बढ़िया से रहे। जहाँ पे वो है, एक दिन हम सभी को वहीं पे जाना है। बारी बारा वक्त बैठ के गुनना है कब जाना है, लेकिन आज जहाँ माँ है वहाँ हर एक को जाना है एक दिन। बस भग मालिक आप लोग इतना सहन सकते थे, ताकत दे कि आप सब सुखवार के लास्ट जो है ओकर मट्टी के जितना चीज़ हुई इतना सहन सकते थे कि आप सब चीज़ सह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, काफ़ी लोग हो चुका है, हम देखते हैं आधे घंटे का प्रोग्राम और है मेरा, यानी कि 25 मिनट और है। हम सोचते हैं 25 मिनट पे हम 4 या 5 गाने और आप लोग सुनाएंगे। और अगले गाने जो मैंने रख चुका है वो है ग्लेन। प्रोग्राम को सुनते हैं, पसंद करते हैं और मांग किया है आँखों तुम्हारी दो जहां। फिल्म जमीर है, जमीर आसमान एक तीन एनन जईफन तक का है। तू ये सीफन तक का, यहाँ एन सीफन तक, यहाँ तू ये सीफन तक लिखा। सिंगर है किशोर कुमार, लिरिक्स है इंदिवर और इसका म्यूजिक डायरेक्टर है खुद किशोर कुमार। ठीक है ग्लेन, हम आपको गाने पहुँचाते हैं आपके पास। Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

जी हाँ दर्शक भैया, आप सुन रहे थे किशोर कुमार के वाज़ील। दत्त इस फिल्म में काम किया है और मांग किया था ग्लेन। जो प्रोग्राम को सुनते हैं उस गाने को मांग किया था। जी ग्लेन, बहुत बहुत धन्यवाद यार कि आप प्रोग्राम को सुनते हैं, मांग किया है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया भाई। आप फाहन को सुनते ही और पसंद भी करते ही, ऐसे ही सुनते रहना, शुक्रवार को फिर रहेंगे और मजा ही लेना। मैंने एक सवाल किया था, अगर आपके पास जवाब है तो मुझे ओवर एंड से ऐप कर सकते ही आज अभी से, तो अब तक तो बंद क्लोज हो चुका है हमारा ऐप। सवाल था, इंडिया में जहल को जेल को सब क्यों हवालात कहते हैं? अगर आपके पास इसका हल है तो मुझे ऐप कीजिए। तब तक के लिए हम चलते हैं अलमेरा, जहाँ पे मनोज एक बहुत ही बढ़िया कलाकार है दोस्तों, एक कलाकार, एक बहुत बढ़िया कलाकार है मनोज, और इस प्रोग्राम को सुनते ही अलमेरे से और गाने को मांग किया है। और सच में एक ही बहुत अच्छा कलाकार है, बहुत अच्छे गाने को गाते हैं और स्टाइल में है, बहुत अच्छा स्टाइल है उसका, और वो भाई है हमारा, भाई से बड़ा है, और मांग किया है प्रोग्राम को सुनते हैं। मांग किया है ये मौसम रंगीन समा, और देखा जाए मुकेश और जुमन कल्याणपुरी की आवाज़ है, और इस मूवी है देखा जाए मुडर गिफ्ट और नेगेटिव इन शस्त्र का है, और मुकेश कल्याण सुमन कल्याणपुरी है, इसका म्यूजिक है रफ़ी ने म्यूजिक को बजाया है, और लायरिक से गुलजार पतवारा। ठीक है दोस्तों, हम चलाते हैं भाई मनोज अलमेर से, जो एक बहुत बहुत ही बढ़िया कलाकार है। आज मांग किया है ये मौसम रंगीन शमा।

जी हाँ दोस्तों, ये था अलमेर में जहाँ मनोज मनोज इस प्रोग्राम को सुनते हैं। एक बहुत बढ़िया कलाकार है भाई, उसका गाना मैंने सुना है, उसका गाया हुआ गाना भी मैंने सुना है, बहुत अच्छा कलाकार है। प्रोग्राम को सुनते हैं, सही जवाब को दिया है और गाने को मांग किया था। ये मौसम रंगीन शमा और फिल्म है देखा जय मुदर ग्रिफ और निकतिन एनन सस्त कहे और मांग किया था मनोज अलमेर से। भाई मनोज, आपका गाना मैंने पहुंचा दिया आप तक और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया का प्रोग्राम को सुनते हैं हमारा तुम्हारा जो लोग सुनते हैं। और 10 मिनट का और है, 10 मिनट और बचा हमारा तुम्हारा साथ, हम फिर मिलेंगे शुक्रवार को। तब तक के लिए 3 गाना और है, हम सोचते हैं हम 3 गाने ज़रूर फरमाइश में सुना देंगे। चलो हम चलते सूरीनाम की तरफ, जहाँ पे वर्खदाक से गुलाम नबी वैक से गीता का श्रीराम प्रोग्राम को सुनते हैं और मांग किया ओ मेरे दिल का चैन। किशोर कुमार की आवाज रेस खन्ना इस फिल्म में काम किया है और देखा जाए मेरे जीवन साथी निखिल जिन ट्विंस इवन तक का एरदे बर्मन का म्यूजिक है, मजरूत सुल्तानपुरी का लाइरिक्स है दोस्तों। काशीराम के नाम, गीता काशीराम के नाम।

जी हाँ दोस्तों, वेलकम से गुलाम नबी वैक्सी मफरो काशीराम, गीता काशीराम प्रोग्राम को सुनते ही सही जवाब को दिया और मांग किया था ओ मेरे दिल की चैन। ठीक है, मफरो काशीराम गाना मैंने आपके घर तक पहुंचा दिया। वक्त से जुड़े हैं और वक्त कम है, दो गाना और है दो लोग के लिए, वो दो गाना मैं सुना देता हूँ, उसके बाद हम विदाई लेंगे अपना। हमारा हिस्से का प्रोग्राम खत्म हो चुका है। ठीक है दोस्तों, हम चलेंगे जहाँ से रुदि गोली भी प्रोग्राम को सुनते हैं और मांग किया है मुजाफिर हूँ यारो, किशोर कुमार की आवाज़ है, जितेंद्र इसमें काम किया है और मूवी है परीक्षा नहीं करती तो सीफन तक का है, लाइदिक से गुजार की म्यूजिक डायरेक्टर है एर दे बिरमन और गाना चला जाता है गोली के तरफ रुदि गोली।

जी हाँ दोस्तों, जनाक्षर सी भाई रुदी गोली प्रोग्राम को सुनते ही और पसंद भी करते हैं। और मांग क्या था, मुसाफिर हूँ यारो, परीक्षा है मूवी का नाम नहीं कहती तो इनसे ही फंड का है। ठीक है भाई गोली, बहुत बहुत शुक्रिया रुदी कि आप प्रोग्राम को सुनते हैं पसंद भी करते ही। शुक्रिया, ऐसे ही सुनते रहना हमारा रेडियो फहन को। और एक आखिरी गाना बचा है दोस्तों, मैंने बहुत नहीं लिया, फ्राइडे को मैं फिर रहूँगा, प्रोग्राम को हम आगे ले चलेंगे। ईदन से मफराव शकुंतला है, प्रोग्राम को सुनता है, सही जवाब को दिया था और सही गाने को मांग किया है। मफराव शकुंतला ईदन से है और मांग किया है कितनी हसरत है। और चले सुनते कुमार शानू, कुमार शानू और साधना संगम की आवाज़ है दोस्तों।

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जांच, सरस्वती माता जी जे हमको अपनी आजीर बांधे। तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार, प्यार भरी अदाम सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश विदेश के समाचार को सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम। अभी आप लोग सुबह से हमारा कलोई खा साथी और वो है अनिल सरजू से प्रोग्राम को श्रवण किए हैं, यहाँ से हम एक घंटा सुरीनामी समाचार सुनाएंगे और शाम को 6 बजे अपना प्रोग्राम को मेहराल करेंगे। आज है मंगलवार, 13 तारीख अक्टूबर हो चुका है, घड़ी की ओर देखा जाए तो 11 मिनट हो चुका है 12 बजने में, मंगलवार का शाम का प्रोग्राम है।

हमारे दोस्तों, हमारे जनता, हमारे प्यारे प्यारे लोग, हम एकदम से चला जाते हैं, शुरुआत करते हैं और हम चलते हैं अपना सूरीनाम देश में। सूरीनाम देश की ओर हम जाते हैं, हमारे मौसी मौसा नानी नाना देखो भैया रोफ ओवरफॉल की ओर तो हम तो जाते। एक आदमी भैया सुतला और सुतले में होकर 12,000 यूरो से बन रोफ कर ले से नानी। तो बोलिए चोरवन कैसे जानिस के रमिया 12,000 यूरो लेके सुतल है। तो एगो 25 बरिस के आदमी ऐ एल जो है रविवार के यानी सोनदाग के रात के कोकोबिया वेख में सूरीनाम देश में ओके सबन ओवरफॉल करी से भैया हम मस्त कर द क्रिमिनलन खवापन 12,000 यूरो से चोरवन धनी हो गए भैया। और ये आदमी रोवे है मोड़ी पे हाथ धर के बोले है फॉर द वुमन वर्ड कि उस सुतल रहा अब सुतली में चोरवन ओके ओवरफॉल करी से ओकर घर में ओकर कवाड़ी तूर के भीतर गए है। और बोले ना द देर फॉर द वोनिंग वार वेल देख मार नीट ऑफ स्लॉट तू 12,000 यूरो लेके और बिना कवाड़ी तारा कर ले सूते बाटे तू सोचे मॉरिशियस में बाटे कहा रे भैया तू उ देश में बाटे इन फॉर द लंदन दार ऑफ दिस मोमेंट सो एरख ना हमने द क्रिमिनल दिस सोर्ट रोफर्स मेंशन मिसहैंडलन। एंड आई हैव इट ओ गहोर्ड दैट दिस सोर्ट थिंग इज ओक इन गुयाना गेबर्ट मेंशन। एक हैव अन फ्रेंड फ्रॉम गुयानीस अफकोम्स जो यहां रहे हैं वो भी बतावे बोले बहुत जबर गयाना में भी ऐसे रोफ हुए भैया। और गयाना और सरनाम में इतना जबर रोफ हुए द दादस ओवर मिस्टर द हेसलाख्त ओवर बदरेख करी पिस्तौल से और ओकर 12,000 पैसा जो ओकर नख काशे में रहा ओकर बेदी लगे ओके लेके और सब झग भगे भैया। बोले ना द दान फॉर लीटन द फरदाख्तन ऊपर से ब्राउन फिश पेस चोर चल गए डॉलर स्ट्रांत में रेखतन इंदिरा लैंड में सिपाही एकर बारे में ऑब्सपोरिंग फॉर आन होल्डिंग खोजे हैं लेकिन ओके का पियो भैया ब्रॉम पे सब 12,000 से धनी हो गए हैं नानी। तो ये सब चोरी ऊपर से तो के 12,000 यूरो लेके और तू कवाड़ी ना ताला कर ले भैया तू कितना चलाक आदमी बाटे मैं बतिया ये 12,000 वाई कहाँ पाई से वरना लिखल कि बिजनेस करे कि साकमान है कि नीदल अंदर है कि बैठल अंदर एक बारे में और ना लिखल। अब देखो दोस्तों हम जाई है रोनी ब्रंसवाइक की ओर। तो रोनी ब्रंसवाइक यानी कि बॉब के का बोले हैं फ्रीज साम फिन दैट एनडीपी लेडिंग स्टर्क मुसैन ऐड हुकूमत तेखन ऐस प्राखन फन रोनी ब्रंसवाइक। हाँ एनडीपी के पार्लियामेंटारियर जो है जेनिफर फ्रेजसाम एनडीपीयर है बोले उफेनी करेगा कि बहुत यामर दैट द लीडिंग फॉर हर पार्टी दिस एनडीपी के लीडर जो है बोले नीत रियाखेर जो इस प्रक अबोब लीडर और बोले ऊपर से कोलिसी पार्टनर है ब्रंसवाइक रोनी ब्रंसवाइक की एनडीपी के 18 सीटल है मैं 18 सीटल बोले आफ्टर ओपन फरकी सिंह में नीट हीव को वोनन जो बोले 18 सीटर से बोलू ना जीता ली बात अबॉब यानी कि रोनी ब्रंसवाइक बोल ले रहा। तो एनडीपी के पार्लियामेंटर जेनिफर फ्रेजसाम बोले एनडीपी बोले एक बारे में बोले एक को अंतोत ओके ना दीज मैं भैया कभी कभी सच्चाई के आगे तो कौन चीज जाइए वहाँ मूड लड़ावे भाई एगो इरलक बात है दन इस मुहिलक अन यहीश्त अंतोर तक हीफन रोमल अंतोर का ये आलतेट हीफन और नौ रख रोत्सोई का ये वेल ऐ बोले सच्चाई के आगे झूठाई साथ ना देवे भैया एक सेखनी दत दत दत ब्रंसवाइक अलमाल ही रेक्स है मैं ओम अलखमी जही जब कभी तू सच्चाई बोलियो भैया तो आदमी थिथराई बतियाएगा बाकी ऊ ओकर संगे तेख स्प्रीक
खाली onzin करेगा maar waarheid toe naar कर पाएगा. Volgens vreedzaam heeft de Paarse Partij de verkiezing wel degelijk gewonnen en moet zij haar positie nadrukkelijk opeisen. Bolehega, Jennifer Bolehe, en na Simons i Duse Jennifer Bhaiya i parlementariër hega vreedzaam ke baanchit hoe he maar janta aur bole de politica sit he uitblijven die verzwakt maar wel aan een verzwakking van NDP, dat inderdaad een verzwakking en ik geef dat toe. En je moet zeggen, want als je het niet zegt, zal het ook zo blijven sudderen. Ibata Kahina vreedzaam ik erbaan in mijn pribole, want hij is zelf een NDP'er. De ik erbaan in mijn presentator Jenny Clifton bij jou Lomburgo. Lumburg kan willen merken op dat er tijden zijn geweest waarin hij ook actief was binnen NDP en deze Bouters de leiding had, want Bouters NDP keren Limburg STV en Kamatra gaan of op een april radiostation Colise. En je weet mensen, de meeste media in Suriname zijn politiek gebonden. Als je politiek ook sponsor krijgt, politiek dan ben je geen vrije media mensen. Dat hebben we heel veel in Suriname. Wel, de vrije media heb je niet, waardoor mensen alleen maar dingen in de voordeel gaan praten van zijn eigen politieke partij. Vrije media is een media namelijk dat je iedereen neutraal zonder enige belang namelijk kan interviewen en je commentaar kan geven. En dat hebben we in Suriname heel weinig mensen. De meeste media in Suriname zijn politiek gebonden en de houden ze zijn mond dicht als ze kritieke vragen moeten gaan vragen bij een politieke partij of ergens anders. Op Bologna, ook bij de NPS was dit in de periode van voorzitter Roland Venetiaan het geval. Partijen kwamen dan sterk uit met een tegenverklaring. Toen ja, betaalde het dosto, nu dat wel gebeurt en de NDP-leiding het ook nog accepteert vanuit de coalitiepartij, betekent volgens Kemke en de NDP inderdaad zwak. Baba, ja, bouwt zwak, hè. Bolo tegen aan wat jij pawe hega. Ronnie Brunswijk, John Etra Barca Bolisega, kito Atala Seita Leke NDP, toen Najitle Bate, want Hamlun Tor Saddeli Bate, tapto hij president van Lebate. En dat is ook de waarheid, mensen. Vreesaan heeft de NDP wel de parlementariële meerderheid en moet de partij haar leidende positie binnen de coalitie duidelijk laten gelden. Toe je baantjeet horen, de NDP willen de partij heeft het ook moet ook dat opeisen. Toch maar de janta je ze bebaant aanplukken. Suriname DC Suriname ke samachar ko hum sunate hai ab dekho bhai ek laik bahi ke gail hai ego badreif hai u hai tutli fo kanaal weg me volgens mij bhaiya hiya likhle tutli fo aur kanaal weg na likhle to samme chahi bole ke ichi yu aayega sinmeester chilcher weg me ego badreif hai tutli fo हूँ आप एको लेक मिल के गए है और एको हिंदुस्तानी के भैया है लेक इसमें में ब्लूट खून ओके लगल रहा डिफेंसे स्टांसी से इनकसकाकल और बतावे है कि हाउटेन के द पुलिसी हाउटेन के कर बारे में खोजे हैं एक हिंदुस्तानी जो लाश हुई गया फिरन तख्त तक यार आदमी ओकर नाम बा रूप नारायण रघुनाथ भैया ई तुतली फो मिडन वेख में रहत रहा और सनिचर के 10 तारीख अक्टूबर के घर से फरतरेक भइले और कभी लौट के ना आइल है और बोले हैगा ओ खक्लीट इन अ रोड टी-शर्ट और स्वार्थ पंतालोन और ओकर अब लाश जाए के मिलल है तुतली फो में भैया को बदरैफ लगे तो ये बात है हमारा सुरिनाम के तो बड़ी दुख के बात है तो जो परिवार है परिवार जो है रघुनाथ आपके दुख में रेडियो फाहुन जरूर शामिल है तो हमारे जनता और आगे हम जाएला हियां एगो फोटो है भैया एगो फोटो है ओ मली छै भाई ओ फोटो ने देखन टॉयलेट पोत है एगो फीस बाक है भैया और फ्लूर तो तीखल करल इतना नासी गोरे बामी के पाकी अली चमली सब बिगल है
टॉयलेट एकदम मली छे भाई थे एक बारे में बोले जग जर बंधन का बोले है जर बंधन बोले कार्ट स्लेक्ट आर्बेट ऑमस्टांडीन बाई डिफेंसी आन ते डिफेंसी के फोटो है भैया खाई जोन है फिनाशील पोसिसिये डिफेंसी कम करतन के बोले तू ताक कितना स्लख्त जेनिफर बोले एकर बारे में बोले तू अब तू बताओ कैसे ई चीज होई सके है बोले यहां हम तो कब भवेश दिखाईला तो 12 तारीख अक्टूबर के जरबंधन जोन है डिफेंसी मात्स्कापन के फर्स्ट केलंद बोले गए मेमरे ब्रुकु का सरना में बोले सब देखी से और फोटो बनाई से और बोले हुआ के सैनिटेर जो नहींगा फोर सीनिंग जो नहींगा बोले अंदर मात सेगा बोले हैगा फोलक जरबिंद जरबंधन बोले ब्लैक आइट फोटो दर द टॉयलेट एंड बपाले डिफेंसी लोकांसी इन सो सेक्स द स्टार्ट फॉर केयर दैट मस्क अप एंड सेल्फ वाटर मुटन शोवन ओम देसना खबरई दूर तो स्पूले दरना सो द अनफोल्डिंग द स्कून मार्क मिडलन kijkbaar zijn om die sanitaire ruimtes hygiënisch te houden to lantieke chije bhaiya defensieke chije hai abbe koi orlog aa jayega tab toilet kahan damien jaye bhai wo hansi to ye baat hamara defensie mein hai defensieke regels hai bhaiya ki jo uniform mein to ke chahi apan joota putsa kare ke chamke ke ye uniform moet schoon netjes uitzien aur sanitair jo hua dekhiyo bhaiya to 1 kilometer door se gandha है छांट भी कर दियो भाई जरबंधन वेल फंडर अकेरिंग वीटन ऑफ शाय ऑफ द हुक थे इस फंडर ओमस्टांड खीने एल वेलकम हाथ रेखले वर्ड कंट्रोफन ओम द सैनिटरी फोर्सिंगन ते रिनोवेट एंड द स्ट्रक्चरल स्कोन तो होल्डन ते बोले बहरे खब चमके भैया अटवालेट में तू बैठ ना सके हैं ट्रैक ना कर पिए सबन बल्टी से लेके जा अटवालेट में भैया अब्बे श्रीलाम हमार काई बरीसन पुराना खीने रात से चीज लेके चले हैं फूडिंग टेजेंस Verzoek op een loonverhoging of financiële positie van het defensiepersoneel baart het DNA-lid zorgen. Op het DNA-lid verdienen defensiemaatschappen respect waardering van de basisvoorziening. तो ये फोटो देखियो भैया तो छांट हुई हम जाए है भैया तेरी पीएल के फोर्स से तर जो रहे सोमो हार जो भाई बोले वो उन्हें प्रोजेक्ट बोले मांडलेक्स अफ्लोसिंग फान $100 यहाँ लिखल है तो सुमो हारजो पर्चा लहूर के पेयल के का बोले के गो वोनिंग प्रोजेक्ट है बोले है मोखल क्रेखन से एक वोनिंग बोले मांडलक से अफलोस करी $100 बोले अफलोस करी पॉल सुमो हारजो बोले है इनिशिएटिव एन इनिशिएटिव opgezet in kader van het 50-jarige bestaan van de partij. En bole zomaar hardo bole he. Bole he ga partij zal functioneren. Partij zal fungeren. Het project is naar zijn zeggen toegankelijk voor de Surinamers die alleen voor partijleden kehe. Die partijleden he ga usab saudala per maand bariga. I woningbouwproject ke bhaiya. Aur je oise kariye to sowieso to ke jai somo hardo ke stem kare ke bhai. तब तो देश चाहे चूली भक्कड़ में जाए मैं तो के 100 रुपया करवाए तो चाहे ओके करेगा दत इस अलमाल बदूले इधर इन कई नार से एक पार्टी में से दत जो अब मैं मुझ खान स्टेम मैं आज इन द बलंग फन द अलगमीन लंड इस ना वर्ड वेनिक एरान गदान में से फॉलो को सुमो हार जो कुनर के इंटरेस्टेड इन विया एन ओवरइन कॉम्स में द बैंक फिनेंशियरिंग आन फ्रागन वोनिंग फॉर गजिरन एंड यंगरन द गप्लांड वोनिंगन मुटन अंडर मेयर 2 स्लैबकामर ego woonkamer, koekroebadkamer, toilet, tjahinga, somohar, dus stel dat de partij verder wil kijken naar de eerste groep van 100 woningen, gezien de woningbehoefte in Suriname. To i project ke bare mein hega, bole ki, aise aise tulon kar sako hai.
तो ये बात है हमारे प्यारे प्यारे मीठा मीठा जनता। गया दिन हाउट ऐट नर प्लेन ना वाइहरिंग स्कोर्सिंग फॉर राम सुकुल इन देना फिक्त आप लोग जानो फेहपी के फ्रैक्सी लेजर असीस कुमार गया दिन बोले फोर सेटर हैगा और बोले हैगा अने फोर सेटर फाने नेशनल असेंबली के बोले है ओकर नाम बा इफानेल दो प्लेन के बोले उन नाम वो हंडल करी सेगा और बोले हैगा और बोले हैगा फरखरिंग वां बोले नस कोर्स करी से खा हंडल दोनों फर्सुक कि एगो कोर्टे स्कोर्सिंग दे अफ्टरवेशन द स्कोर्सिंग वाज बदुल्ड om VHP parlementariër Kiesje Ramsekool alsnog de gelegenheid te geven zijn spreekbeurt voor te bereiden nadat de sprekers volgorde onverwacht was gewijzigd. बोले बिना फरवाह करे बोले को स्पीकर जो ना बोले चीवा वैसा करते थे बोले को कहीं फतेम दे कि बोले को छोटा स्कोर्सिंग दे फॉर ब्राइट करेगा और बोले हैगा गया दिन बोले से दैलक अस्प्राक हैगा कि फॉलोग ऑर्डर वाले पार्लियामेंटारियस एंड वर्ड सोडन फूरन एयर सोडन द लीडन van commissie van rapporteurs aan het beurt komen, gevolgd door de overige parlementariërs, de parlementariërs met wie je hoe hard hem te doen keer binnen regels te komen hoe we heen en dat gebeurt dit soort dingen Ramse Koel bebole heen ki uste mepe gaya din fractiekamer mee raan, waar hij bezig was zijn bijdrage voor te bereiden. Toen duidelijk werd dat de twee andere commissieleden niet zouden spreken, haastte hij zich naar de vergaderzaal. Gayadin vertrok daarom om een korte schorsing, zodat Ramsekool zich op het spreekweer kon voorbereiden. Plein, die op dat moment de vergadering leidde als plaatsvervangende voorzitter, wees het verzoek echter af volgens VHP-fractieleider op de Kobolevia. Dat u verzoek mag leiden naar deze, omdat hij op dat moment namelijk de voorzitter was van de DNA. Op de koop bij een man met revolvers, pistolen leken bij een 10-33 lijvolle scherpe patroon, bolle illegale goud aangehouden in Klaas Greek, zona bioker pas paise, illegale zona bipaise, sipai Klaas Greek met bij een pistool 33 go oruk illegale zona, ego Toyota Fitz bestuurder aangeduid met de probeerde te vluchten toen het merkte dat hij de woorden Abu Bhagemang is, maar dat ook is bij Kabul RBTM ke regio bijstand in midden ke ook in de rijke pakkelijse. Bolle toen de bestuurder besefte dat ze zouden worden aangehouden, zette hij het op een lopen. De kiske schoten op de pakkelijke zoek is doureke bij ja, doureke bagis, maar de politie wist hem enkele tientallen meter verder op achter te halen, ook een pakkerisje. Op het tijdens een verhoor verklaarde dat ook een paar pistool heeft. Op het paramaribo met Ugeil Haukinise gekocht om zichzelf te beschermen. Uit het verder politieonderzoek zou daarna zijn gebleken dat de verdachte het aangetroffen goud op een illegale wijze in zijn bezit had gekregen. Maar ja, de abtu ijaiga ganagawe tununtu samajgele kahan ganagawal jahe bhaiya. ना प्लाता हुकुपे हम जाएले भैया इकोनोम विंस्टन विंस्टन और रमौतार सिंह की ओर हम जाई है रमौतार भैया कृति से ऑफ द यार रीड सिमोन के कंक्रीट डूलन इन फिनिशिंग्स ऑन यहां बताए गए हैं इकोनोम विंस्टन रमौतार सिंह फिनी करे के जो रार यार रीद भले और वो करी से हम लोग के प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन और वो बोले है हिरलिंग्स बोले ऑन फॉल दून द डेडलाइन करी से के जो कंक्रीट रिजल्ट करी रखेरिंग के बोले विल ब्रेकन एंड हु से हर प्लानन गान फाइनेंसिएरन बोले फॉलगंस फॉलगंस हिम ब्लेवन द अनकोंडिग बलेज फॉरनेम्स द फ्री ब्लेवन सो लॉन्ग मीटबार डूलन इन द बेबे होरन बखरोटिंग्समिडल ऑन ब्रेकन de Ibade Boli Sega, Econom Winston Ramautar Singh Boli Sega en Jennifer Simonke bolle duidelijkheid na hem. Ramautar Singh plaatst daarnaast vraagtekens bij de rol van het kabinet, van de president bij de uitvoering van het regeringsbeleid. Oefenikare Hega, die een werkgroep heeft, die een platform heeft, voor de verantwoordelijkheid van de minister niet mogen ondernemen.
दोस्तों अब भी आपको अभी हम आपको और समाचार को सुनाएंगे और हम सोचे आपको एक

Glorieta Savita Zindustu, जो महिमा बन के आई इस नागसों ली जो आपको हम सुना दिया है। तो अभी हम आपकी और कुछ गीत को जरूर सुनाएंगे। हम चलते हैं और आगे को अपना समाचार को लेकर। घड़ी को देखा जाए तो बज गया है 12:30 5:30 लाइव प्रोग्राम यहां से हम प्रस्तुत करते हैं रेडियो फानूम के माध्यम से। आज है मंगलवार 13 अक्टूबर और हो चुका है हल्फ अक्टूबर हो चुका है दोस्तों। नवरात्रि के प्रोग्राम चल रहा है और नवरात्रि के प्रोग्राम जो चल रहा है मंदिरों में चारों बगल नवरात्रि है, नवरात्रि मना रहे हैं। जितना हिंदू है सनातनी है पूरा दुनिया पे नवरात्रि मनाते हैं। रेडियो फानूम के माध्यम से हमारी ओर से आप सबको एक शुभ नवरात्रि। तो हम चलते हैं और आगे को अपना समाचार को लेकर दोस्तों। तो क्या बात है दोस्तों, श्रीनाम देश में दोस्तों इतना रूफ हो भैया, तो यहाँ ये होता है यहाँ वो होता है, फिर भी आदमी अपन जीवन चलाता है और सब कोई आशा करी से कि तिलवा कब निकरे भैया, तिलवा कब निकरे कि हम और मोई से अपन जीवन चलाए सके। लेकिन एक बारे में NPS हाँ दोस्तों

कब निकरे तेलवा कब निकरे कि जनता बोले हम अपन जीवन अरमोई चलाए थे। एकर बारे में भैया एनपीएस के गो पार्लियामेंटारियर पुतिनी आतोम पाई भैया बोले है गा बोले द्रैखंद अनकोमंद ऑन्टविकलिंग इन द ओली इन खास सेक्टर फर्स्क्रिकलिक गफोल्ग ते हैवन फॉर सुरीनाम। बोले तेलवा जा निकरी गा ते बोले देखिए कितना बड़का बड़का गफोल्ग फर्स्क्रिकलिक गफोल्ग हो यो कर बारे में फरंदरिंग कौन क्यों हुई। बोले धनी आदमी धनी हो जाए गरीब आदमी गरीब हो जाए ओकर मतलब हिया ऐसे है सुरीनाम। बोले सुरीनाम बोले है गा वो फोल्गस हम साल द ग्रुप रेके मेंसन क्लेनर वर्डन टरवेल द ग्रुप में आर्मन यही साल ग्रुइन। बोले है गा जो जो जो गरीब है और ज्यादा गरीब हो जाएगा और बोले है गा द क्ले द ग्रुप रेके मेंसन क्लेनर वर्डन। बोले है साल फर्स्क्रिकलिक चैन इन सुरीनाम में ओली एंड खांस। बोले एकर बाने बोले पांच गो होटल बने भैया दस को हाफन बने हैं। बोले जो धनी आदमी है रेकमेंसर साल क्लेनर वार्डन तरवेल द ग्रुप फन आर्म में से ग्रोटल साल वार्डन द खुदकोपस्ट पर्सेल इन सुरीनाम सबसे जो सस्ता रहेगा का बोले हैगा अन जगह आदमी के बोले जहां पे बोले जहां मेट लेख्त वाते ने फरदार द वीक नहीं बोले शुरू हैगा 22,000 यूरो से बिकाई के। बोले के ओके किर पाई एकर बारे में आ तुम पाई बोली से बोले धनी धनी हो जाए गरीब गरीब हो जाए। बोले द पॉलिटिक द पॉलिटिकस फॉर द आन कि बोले जो जगह जमीन है ऑन रूरल खुद सुरीनाम में बोले 15% omhoog is gegaan। बोले het gevolg hiervan is dat meer mensen hen moeilijker zullen hebben। इकर बारे में प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन बोले aangeven करिस कि सुरीनाम में बोले onvoldoende is voorbereid कि ontwikkeling जो 2028 के बाद है worden verwacht। आतों पाई बोले है regering tijdig beleid moet maken om de gevolgen van burgers draagleker te maken। Dus toen zo pleit hij ervoor ki tarieven jo stroom ke hai pani ke hai bole chahega mark comfort chahe vaststel kare ke bole jo subsidie hai uitsluiten worden versterkt ki burgers deze tarieven niet kunnen betalen bole verhoog hoi ge hai। और बोले है मैं दी 23 साल में है सीन है बेई बखरेपन वर है खाद नीट खमाकलेक सेन है लंग साल मोई जैन अन देल साल ओकलविकलिंग सेन मार है खदेट लवान मेंसन दी het moeilijker hebben om zich te redden is niet om naar huis te schrijven। तो ये बात बोले है आतों पाई और तो लोन जानो भैया इतना कर्जा देशवा में हुई गए है 2028 से जे तेलवा निकले देर तक तक तो खाली कर्जा भराई भाई खाली कर्जा भराई और जब कर्जा भराई तो देश कहाँ से हम लोग के चमकी लात वे होप दस ओंस रखेरिंग अन खुई प्रोग्रामा माक में से ओम दित अलमाल खुद तला te cool lopen en niet alleen maar denken het komt goed, het komt goed, het komt goed. Zo werkt het niet mensen, je moet het wel goed gaan voorbereiden. Drive-by shooting, schutters vluchten in twee voertuigen bij ja chalte me daga wel bhaile Suriname des me hamara nani chalte me dui admi atwar ke bhaiya bole for a warning Leonard Bell straat me bole hai ga chalte me atwar ke twee manen se zondag beschoten terwijl zij zich voor een woning aan de Leonard Bell straat in Suriname voor ghar ke aage dui mila khada raha तीन मिला चल ओ तो लेके जाए चलते मी सबके दागी से माँ सबके मीसी कर दे भैया लैया ना लगल है फोल्क द बस के एक बार इंफॉर्मेशन स्कोटन द द्री मानन बुर्तलिंग्स में द रिवॉल्वर इन द रिक्टिंग फॉर द स्लाक्टोफर। बोले द बस की तेगर फ्लुक्टन से टू ई फोर टेकर एक ओ ग्रेस लेक्सस रहा ईएस एन ग्रेस टोयोटा फिट फॉर अ न्यू मॉडल से रीडन वेग इन द रिक्टिंग फॉर सैमुएल फिनोक स्ट्रैट में। तो ये भी भैया देखो सुरीनाम देश में चलते में भैया घर के आगे खड़ा हुए तो जरूर एमा कुछ रहा हुई सोमार थोड़ो ऐसे कोई दागी नानी सोमार ऐसे कोई ना दागी के जरूर एमा कुछ मेद मतभेद भइल हुई। तो ये बात ना है हमारे नानी। अब देखो भैया सही दौरफ के सब कोई जानो हुए फुटबॉलर हैगा इंटरनेशनल फुटबॉलर रहा हम लोग के नीदरलैंड के
नेशनल फुटबॉलर और बोले सईदौरव के परफॉर्म आने का कि हाँ ना हाईवे पे भैया एगो सईदौरव फुटबॉल फेल थे हम बीते हुए साल गए रही देखे भाई खाली भूस लगल है डाम कंती भाई का बोली हमने ये स्पोर्ट एंड इट इज सो मोई खमाक मान एंड इक विन जो एरक जोंद की चीवा को अंदर हूँ इतना स्लाख्त है सईदौरव वर्ड होफ ट्रेनर बे द ब्रासियांस क्लब कोर्टीन तियांस भैया अब सईदौरव जाएगा ब्रासिलिया के क्लारेंस सईदौरव के बाद बतियाला अब ही जाएगा ब्रासिलिया के हुआ के एगो फुटबॉल फरीनिंग है कोर्टीन तियांस लिखल है अन डिग्रादासी हो दन 50 यार का आउट इंटरनेशनल इस आंकस्टेल अल्स होफ ट्रेनर फॉर द क्लब फॉर द मेम्फिस डिपाई एंड सकारिया लिबाई Zijn contract loopt tot 2027. Toen het moeilijk is, sport ke baare mein, toen hum bahut kam bolte bhaiya okar baare mein. Aur koi log hai jo apna program ko manate, lekin ye news hai, toh uske baare mein hum jaroor kuch bol dete hai. Hamare sunne walo, hamare pyare pyare janta, jo aapko hum इस समाचार को रेडियो फाहुन के माध्यम से सुनाते हैं और सुनाते रहेंगे हमारे प्यारे प्यारे जनता हम चलते हैं भैया शर्माकारी फिर में तुल जानो कितना मछली मर गया ओकर बारे में पता चलल क्विक फुक ओमा रहा अब देना ले जो है प्लेन विल वेटन कि के फरांतवर्दलक हैगा शर्माकारी फिर में जो उतरा फरखेब भैल हाँ और सिमोन तो बोले रहा कि एगो बदरेफ है एकर बारे में ब्रिंसवाइक बोले रहा बदरेफ हो बगलिए में मछरिया जिए हैगा तो कैसे जाए कि शर्माका मछली मरल है दो सतीस अलमान ऑन दिख देंगे चेस सब जिंदा मछरिया ले गए रहा फ्रांकरेंक में कहाँ गए ऑन सुख करे कि कैसे से मरल रहा ब्लैक बैल है पनिया शर्माकारी फिर के फरफेल हो गए रहा जे मैं बहुत ढेर क्वेक क्वेक रहा भैया अब एक बारे में एन पी एस पार्लियामेंटारी इफानेल्लो प्लेन जो है बोले हम दैलक खेद मांगेला ओवर वी फ्रांतोर लेकिन फॉर द फरफेल फॉर शर्माकारी फिर इन सूरीनाम बोले है स्टेल दैट फॉर ओरसाकर मुट ऑफ फॉर द कॉस्टन फॉर द स्कादे एंड गफोर्गो फॉर द गट्रोफो गमीनस्का प्लेन रिएगेरे हियरमी ऑफ द फुस्टर पैकेटन दी हेड कैबिनेट फॉर प्रेसिडेंट ही फर्स्टरक ऑन द गडुपेर्ड द अप एनमी अब कैबिनेट जाय के खाना पीना पैकेट पठावे भैया बेनलांत में उसे अमदा तो सबके पानी मोरसू हो ये है द प्लेन बोलेगा उसे कोस्ट चाहेगा उबदरेफो या कोई के भरे के ये फरांतोर लिखे जोन मच्छरियन हुआ के रिपोर्ट जोन हुआ फरफेल करी से En hier ben ik zeker eens met meneer Plein. Maar meneer Plein, niet alleen dat, we hebben nog steeds niet duidelijkheid over de andere diefstallen. Namelijk en zoals de quick verdwening bij de politie. Oor ook erbaan en met zo'n aantal opkomen gegeven. Ketra drugs gegeven. Ketra admi. Kees koutuk. Politiebureau met z'n chichori hoi gegeven. Ook erbaan en met kabie duidelijkheid. Naam helemaal meneer Plein. Ik zou u vragen. Om die ook namelijk boven water te krijgen. Offline hier willen we weten wie de slachtoffers zijn. Maar ik wil weten wie de dader is. Of willen we hem nog niet slachtoffer waken. Hey, maar hem nog mangelen janne hoe dat daar was op kostoren. Maar ik na. Dat is voor mij een belang. Ibar bullet plane en dat geef ik je helemaal. Bullet wie zal de kosten draaien, zei Plein in de interview. और बोले है एक बारे में जेनिफर सिमोन प्रेसिडेंट जो बकेन कर ले रहा बोले है एक बारे में स्टाट्समैन बोले ग्रासाल को बोले चीवा मोर सुकर इसे पनिया बोले ने नाम फन बदरेव दैट ऑफ दिस कंसेसी एक्टिव वाज इज एक्ट नीट नॉट बाय द खबर फॉलोस एनपीएस इज इट ग्रेट बलंग दैट द रेगिंग दिस इंफॉर्मेशन वेल डील ऑन दैट द dorpsgemeenschappen anders in de onzekerheid zullen bijleven तो बोले हैगा एक बारे में बोले हम मांगले duidelijkheid en dan geef ik deze meneer genoeg. Ja, neger Engels met bolie zeggen en enkele keer een pakket geven. Deksma, anno, begisma. Die mensen willen waardige burgers zijn en ze willen daar. De regering komt en zegt welke structurele oplossing zijn kan aangedragen. En dan ben ik helemaal eens met de meneer Plein. अब देखो भैया आग लगल है ब्रांड इन पान में क्यूबांस बहुनस अंडर प्रिंसेस स्ट्रांड
जबड़ आगे हुआ लगल भैया, जबड़ आगे लगल है। और निकेरी में भैया, निकेरी में एक लेक मिलल हैगा जोन बहुत गंधात रहा, खराब हो गया, लाश हो गया हमारी जनता। स्तंक ले पॉलिसी ना लेखाम इन फेर स्टार फन ऑन बिल्डिंग इन निकेरी। निकेरी के बातचीत है शनिवार के हुआ सबन ऑन डेक करी से का नारपास्त्रात में फन पैतन पोलनर में एक लाश मिले ले हुआ एक स्कूल है को नातिन स्कूल है जो इन फॉर केयर द फेयर स्टार फन ऑन बिल्डिंग वाज भैया लोन। तो यहां बताए हैगा और खैर ऑप्स का की फन सिर नाम से पॉलिसी सिपाही गोइन हुआ देखी स्नाक को बंद करके तो ओकर सब निकारी से फॉर मूड लगदा द स्टॉफ लको ओफर्स का लाइन इन गटेट ऑफ द प्लेक लाख। Hoe lang precies, dat weten die mensen niet. Oh, hier wat hij gegeven heeft. Volgens de eerste informatie gaat het lichaam van een geoudere. Bronnen in de westen van Suriname melden van de reactie. Bollega, een oudere vrouw in kwestie van een chronische ziek zou zijn geweest. Mogelijk houdt haar overlijden daarmee verband met de doodoorzaak. Maar na wat hij zei, namen al die kele. Kikke hij die oudere, hamari, janta. Maar dukke ke baat hai jo ye sab cheez milal hai bhaiya SLM ke banti phut gaye sab koi oto ke banti surat raha phut gaya hai brom ke banti basigri ke banti SLM flux na Amsterdam bhaiya plane wa jata raha Amsterdam wo kar banti hai dagge bhai ha hiya dagge hai offer tra khoi gaye SLM phino ना बोलेला अन फरतराग होएगे मां बोलेला फिनो वीर फरतराग मेंस एसएलएम फ्लुक्ट नाम से नाम फरतराग uitgevoerde na klapbaan gehuurde Boeing 777 kian kian banti lagai hui bhaiya sasta sasta plane liho tab ka hui ए बोले अटकान बकी थोरो खिल्ला रहा भैया एसएलएम के फ्लिक फेल्ड पे द गुहुर द बोइंग राशि 772 200 AR रहा SLM के जो परमारी वो आमस्तरजाम जा है अंदर हाउट करे है 11 तारीख अक्टूबर के ओकर बांति दग्गे भाई और बोले हैगा opgelopen bij de landing op de Johan Adolf Pengel Internationale Airport Sanderijpe Dagale Bahia Bantia. Het toestel door SLM wordt gehuurd. Bollega kon ondanks het incident door de piloot veilig naar de parkeerplaats worden gebracht. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken. Vooral was niet merkbaar voor de passagiers aan de boord. Bolusam Najan Paiski Banti Dagge He. तो बहुत अच्छा बात कि अच्छा से रुक गए भैया बाकी बांधती आंती दगे भाई एंड दैट सेम द इंसिडेंट व्हाट कैन गेबेरे मेंसे दैट कैन अलमाल गेबेरे मा द अंडरहोल्ड फन अ फ्लिक्टेज मुत वेल गुड सेन अंडर्स क्राइक दिस भैया आप देखो अल्बिना के ओर हम जाएला भाई मान एक आदमी पकड़ के बंद करी से बदराई करी से अपन बहिन के ओ बोले हप बहिनिया के बोले दीदिया तो के हमें जान से मार दे। एकर बारे में अल्बिना की सिपाही जाए के बदराई किंग के पकड़ी से और बतावे हैगा बदराई किंग भैया अल्बिना में और पकड़ी से है सौ से जिस एन एंकल अंदर फैमिली लीडन हेवन बदराई और बोले मेल द पुलिस इन ओस्टन फन सुरीनाम 21 september ke ga uit op een adres in Albina. Obole de familieleden vreesden voor hun veiligheid en schakelen natuurlijk bij een sipahike. Je kunt ook een bedrijf krijgen, dan moet je zeker de hulp halen van de instanties om jezelf veilig te houden. To, ye baat hai hamari janta. 13 के लड़का भैया मैं ट्वीक स्टीक बोंद न सिकर है लड़त रहा 13 के लुंडा भैया सबन ओके भूख भांग रही से जानता और ये लड़का के सबन सिपाही ने यानी कि सिकन है इसमिली के कर दी से। अभी आप लोग को और समाचार को हम सुनाएंगे। हम चलते हैं एक की नवरात्रि का

अरे माँ, और ये सब नवरात्रि स्पेशल सॉन्ग हम आपको सुनाते हैं और अगला भजन के ओर हम जाते हैं। वो एक गुजराती हैप्पी नवरात्रि जो है।

दुर्गा माता के और भवन जो है वो तो सदा प्यारे लगते हैं और खूब सजाई गई है। तो नवरात्रि स्पेशल सॉन्ग हम आप लोग को सुनाते हैं और जितने भक्त लोग हैं आप सबको हैप्पी हैप्पी नवरात्रि यहाँ से कहते हैं। अगला भजन की ओर हम चला जाए।

अम्बेमा नवरात्रि स्पेशल सॉन्ग हम आपको सुनाते हैं हमारे दोस्तों। तो हम चलते हैं अगला भजन की ओर और वो क्या है आप लोग खुद ही सुनिए। ये एक माता का भजन है भोर बई दिन और आप आइए अम्बे।

मेरे अम्बे और यानी कि स्पेशल नवरात्रि सॉन्ग आज हम आप लोग को सुनाते हैं। नवरात्रि के उपलक्ष्य पर हम सब का नौ दिन का और महा यानी कि नवरात्रि है, तो हम चलते हैं अगला भजन की ओर।

भी का हैप्पी स्टेशन फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो काम जो आपको रेडियो के सिरे कराना है कॉन्टैक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 07 5 2 2 4 7 हमारा तार का नंबर है।

रहकर न करो बात, करीब आ जाओ। सही बात है, जब कुछ बात करना है तो कान में कीजिए या और करीब आके कीजिए। अगर आप दूर रह के बात करेंगे तो सभी लोग सुन लेंगे और सभी बातें अभी नहीं सुनाई देगा। तो फिल्म अमानत का सॉन्ग है, पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी के आवाज़ में ये सॉन्ग चलेंगे।

रहकर न करो बात करीब आ जाओ। दोस्तों फिल्म फर्स्ट का सॉन्ग मैं चॉइस करके रखा हूँ। फिल्म फर्स्ट जो समय पर सुनाम देश में पेश हुआ तो थिएटर द पारल इनका थ्रिलर दिखा रहे थे। आप जानते हैं थिएटर द पारल द लिक्स फिल्म का एजेंट था और थिएटर जसोदरा नहीं नहीं थिएटर द पारल दलित फिल्म के नहीं था, थिएटर जसोदरा था दलित फिल्म के और तीन इंडिया ओवरसीज का फिल्म थिएटर द पारल में पेश किया जाता था। तो थिएटर द पारल फिल्म फर्स्ट का थ्रिलर पेश करता था। तो एक दो हफ्ता पेश किया, उसके बाद थिएटर जसोदरा भी इसका थ्रिलर शुरुआत किया। तो दपाल का मालिक जो था सोचा है कैसे हो सकता, मैं तो इंडिया ओवरसीज का एजेंट हूँ और ये फिल्म इंडिया ओवरसीज का है, कैसे हो सकता है कि दलिक्स फिल्म का थिएटर जो है थिएटर जसोदरा ये फिल्म पेश करे। तो ये बात रेक्टर के सामने दोस्तों जज के सामने पेश किया गया। लोग को मालूम नहीं था कि उन दिनों में देवर प्रिंट में भी फिल्म बनते थे। तो ये फिल्म फर्स्ट देवर प्रिंट में बना और ये खियाना में ये फिल्म पेश होता था दलिक्स फिल्म का थिएटर में। तो थिएटर जसोदरा का जो एडवोकेट था वो बताया कि देखो देवल प्रेत में है और ये फिल्म हम लोग अभी खरीदा है, तो ये फिल्म जसोदरा भी पेश करी। तो रेक्टर थिएटर जसोदरा का मालिक को कहा कि आप सही बात कहते हो, इन्हें कहा कि आप फिल्म पेश कर सकते। तो थिएटर द पारल का जो मालिक था वो तो ये बात हार गया। तो ये फिल्म दो थिएटर में पेश किया गया दोस्तों लगातार। और क्या बात सही बात यह है कि थिएटर जसोदरा न सिर्फ फिल्म फर्स्ट पेश किया, नहीं इसके साथ फिल्म जब प्यार किसी से होता है डबल फिल्म एक पैसा पे पेश किया। तो ज़्यादा से लोग थिएटर जसोदरा में जाते थे और दपारन में उतना लोग नहीं जाते थे, इसलिए कि एक पैसा एक टिकट से दो फिल्म आपको देखने को मिलता था। यह है उन दिनों का कहानी। तो मैंने बताया फिल्म फर्स्ट का एक दो लाइन में एक दो बातें, तो मैं चॉइस करके रखा हूँ। हम तो तेरे आशिक है सदियों पुरानो, चाहे तू मानो या न मानो। फिल्म फर्स्ट का सॉन्ग है जिसमें जितेंद्र एंड बबीता ने काम किया।

0: ना माने फिर भी एक चीज मांगता हो, एक चीज मांगता है हम तुमसे पहली बार।
1: एक चीज मांगते हैं।
2: क्या
0: चीज है?

दिनों का पुजारी किशोर कुमार एंड आशा भोसले दोनों की मीठी आवाज़ों में यह सॉन्ग भी आपने सुना। दोस्तों जुबली कुमार यानी राजेंद्र कुमार, बात यह है कि बॉम्बे में 3 हफ्ता लगातार जितना सिनेमा है सभी सिनेमा में राजेंद्र कुमार का फिल्म सिर्फ पेश किया गया। तो बीच में राजेंद्र कुमार घर पर बैठा था और उसका धर्मपति बीबी का सहेली घर पर आया, तो ये दोनों बैठ कर बातचीत कर रहे थे। तो राजेंद्र कुमार ने कहा अपन बीबी से धर्मपत्नी से कि क्यों ना आप लोग चला जाता हो एक सिनेमा एक पिक्चर जाके देख लो घर पर बैठे हुए हो। तो उसका धर्मपत्नी जो है उसका बीबी जो है राजेंद्र कुमार के वो कहा कि कौन सिनेमा कहाँ पर हम जाए फिल्म देखे, सभी सिनेमा में तो तोर फिल्म आपका फिल्म पेश है। तो इन्हें मालूम नहीं था कि 3 हफ्ता लगातार सभी सिनेमा बॉम्बे में जो है सिर्फ इनका फिल्म पेश किया, तो वहीं से इसका पद्धी मिला, इसका नाम पड़ा जुबली कुमार। तो जुबली कुमार का एक दूसरा फिल्म गोरा और काला जिसमें हेमा मालिनी के साथ वो काम किया, उसी फिल्म का सॉन्ग लता एंड मुका, नाइट मुकेश एंड लाइटिंग गेल लता मंगेशकर दोनों के आवाज़ में।

हमेशा धीरे धीरे बोलना, इसलिए कोई सुन ले आपका दिल का बात जो है। इतने कमजोर मत बनो, इतने कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, इतने कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए।

दिले यार फिल्म का नाम है किशोरदा एंड पद्मश्री मोहम्मद रफी दोनों के आवास में गीत अभी आप सुन रहे थे। फाह हिंदुस्तानी पर आप चुन है और अब की बार दोस्तों ये रेशमी जुल्फे ये शरबती आंखें फिल्म दो रास्ते का सॉन्ग।

ये रेशमी सुल्फे इन्हें देखकर जी रहे थे कभी। सेक्स बॉम्ब राजेश खन्ना, दोस्तों में मुमताज काम किया राजेश खन्ना के साथ इस फिल्म में। दो रास्ते, मुमताज शुरुआत किया फिल्म में काम करने के, तो दारा सिंह के साथ लगभग 10 फिल्म बनाए मुमताज। तो जब दारा सिंह की फिल्म कम बने लगल तो मुमताज इंडिया ओवरसीज नहीं बॉलीवुड का जो फिल्में था इंडियन फिल्म्स, तो उसमें ये शुरुआत किया दूसरे फिल्म में काम करने को। तो लेकिन फिल्म जो डायरेक्टर थे इन्हें काम पे नहीं लेना चाहते, कहा कि ये तो दारा सिंह के साथ झगड़ा लड़ाई का फिल्म में काम किया और लव स्टोरी में ये काम नहीं कर पाएगा। फिर भी जब आया जोर तोर से फिल्मों में तो लोग घबरा गया दोस्तों। लगातार लगभग 6 या 7 फिल्म बनाया जो एक बॉक्स ऑफिस निकला। सभी फिल्मों से ये फिल्म भी दो रास्ते एक हिट फिल्म था मुमताज का। लव इन टोक्यो 6 का स्पेशल, आप जानते हैं जॉय मुखर्जी का कमाल था उस समय। जॉय मुखर्जी आशा के साथ या आशा परेख के साथ फिल्म में काम किया। नारा का मतलब क्या होता है दोस्तों?

सयोनारा के बाद किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं, बात सही है या नहीं? किसी न किसी से कभी न कभी और कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। दोस्तों, जब दिल है, छोटा सा दिल है, तो उन्हें देना पड़ेगा। जब दिल आप देंगे तो दूसरा दिल आपको मैसेज हो सके और बड़ा दिल आपको मिल जाएगा और प्यार भरा दिल मिल जाएगा। लेकिन जब दिल तू सैनिक रहे, दिल तू दबाए के रखिए, न बटिए तो कैसे चले भाई लोग, हम लोग चाहे बाट के खाए के। तो जब दिल है तो उसे दिल दिल से मिला कर देखो, आप जानते हैं, तो मिला ले उससे तो दिल, दो दिल जब मिल जाएगा तो दो दिल जब मिल जाएगा तो चार हो जाएगा दोस्तों। इन एंड इन इज फील, आप जानते हैं, जहाँ प्यार होता है वहाँ हमेशा ज़्यादा रहता है। फिल्म का काश्मीर के कली, श्यामी कपूर का कमाल था फिल्म में।

हर एक काम जो रिव्यू किसे लेकर आना, जैसे कि खास फरमाइश, जरूरी खबर, मृत्यु समाचार वगैरह वगैरह, आप कॉन्टेक्ट कीजिए फाहौर हिंदुस्तानी रेडियो के डॉक्टर से न्यू सी तक 3 5 2 8 फी सी पर आपको तार करना है।

दिल की महफिल सजाने लगी। दिल की महफिल सजाने लगी के बाद जब भी तुम्हें देखूं तो चैन मिल जाता है। यकीन कीजिए, क्या बात है आप में कि जब तुम्हें देख लेता हूं तो दिल का चैन आ जाता है। वाह,

nieuw song met Pitch Karunga Dosto 2025 में ये गीत बना है और मेरे सनम आया है गाना बोल है मेरे सनम आया है हम सब मिलकर सुनेंगे

न्यू सॉन्ग का प्रोग्राम मैं पेश करता हूँ दोस्तों। एक दूसरा न्यू सॉन्ग जो मैं चॉइस करके रखा हूँ, नया प्यार नया एहसास, क्या बात है, नया प्यार नया एहसास। यूबीन नौटियाल के आवाज़ में आप

यार है नया एहसास है। आप एक हैप्पी स्टेशन फाह ऑन हिंदुस्तान रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। मुझे सजना से मिला दे, सजना से मिलना है तो मिला दे मुझे सजना से। न्यू सॉन्ग का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं।

जब जब तेरा प्रेम है अच्छा, जब प्रेम है अच्छा तो सजना जरूर मिलेगा सच्चा तेरे हवाले। अरिजीत सिंह एंड श्रिया घोषाल दोनों के आवाज़ों में मैनू मैनू चाहिए इश्क में रंग तेरा, एक हो गया अंग मेरा अंग तेरा।

इंडी लव सॉन्ग्स बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग्स में अब की बार पुसी का संगीत आप सुनेंगे। इश्क इश्क दीवाना होता है और मस्ताना होता है, उसी से क्या क्या होता है दोस्तों।

हर खुशी से हर गम से, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है मून कॉलिंग, नेहा कक्कर एंड गुड़ सिद्धू।

कक्कर हूं मैं, क्या बात है, हार्ड स्टाइल रोमांटिक सॉन्ग थ्रू लव।

सेलेक्टा बीच शो बैंड, सेलेक्टा बीच शो बैंड बॉबलिंग मैशअप। न्यू सॉन्ग का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं।

अफ्रीका हैप्पी स्टेशन फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। प्रोग्राम गीतों का संगम में चटनी सोका आप सुनेंगे दोस्तों। एक बार मैं कहता हूँ चटनी सोका, फिर भी छोटे में मैं कह देता हूँ मिक्स म्यूजिक, जिसमें हर एक तरह के म्यूजिक मैं आपके लिए पेश करूँगा। मिस्टर राम नारायण या रीमोन नाम माफ के रीमोन राम नारायण के आवाज में नकाटिंग। नकाटिंग नकासानी

0: ting ting ting ting ting ting ting ting
1: Now, Mr. Tasif Bux. और तस्वीर बस आपके लिए पेश करेगा केसरिया एक्स काउंटडाउन।

0: आपकी बार दोस्तों, ये मोक्सी अलैसी नहीं, ये मिसिक मोक्सी है और मिसिक मोक्सी में ओल्ड चटनी पार्टी फॉली में इनसे मैं निकाल कर आप तक पेश करता हूँ।
1: The world's number one soca chutney band. You're Dilly Nedan, bigging up the boy DJ Rahman Entertainment to the world.

फ्लोर बिना चटनी कैसे बनी? मैं सोचता हूँ आप सभी को मालूम है कि ये चटनी कैसे बनेगा। हाय शोली ग्याल, शोली ग्याल तू का करे है?

दिया और रूबिया। दोस्तों कार्तर कड़मा अनु ताकि मिनो लोबियू, हा सुमा ताकि मिनो लोबियू, मिलो बयू थ्रू।

मिक्सी पोकू चला है दोस्तों, अब की बार दो दो दो दो पोपो बिलैया टोके काटी, बच के रहना दोस्तों खरबोट लिए भी।

ये सही बात, ये सभी बात आप सूरज और फूलों से जरूर सीखना दोस्तों। जगना और जगाना, राजा सविता सिंह की आवाज़ में।

टोन एक सविता सिंह के आवाज में भी आपने सुना। विशाल हीरा तैयार हो गया है दोस्तों, और विशाल आपको फरमाएगा भैया टेक लड़की।

आपस में देखा तो गए मुस्काए, जरूर मुस्कुराना चाहिए दोस्तों। जब नजर लग जाता है तो वहां पर मुस्कुराने का बात भी होता है। अब की बार इंडियन रॉम शॉप ओल्ड लेडीज।

प्रोग्राम में एक दो चटनी सॉन्ग चलेगा दोस्तों, और चटनी सॉन्ग आप जानते हैं, जब चटनी का नाम लेता हूँ, चटनी सॉन्ग तो त्रिनिदाद गयाना वहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा चटनी सॉन्ग गाते हैं। तो मैं त्रिनिदाद से शुरुआत करता हूँ, शाम सुंदर पृथ्वी के आवाज़ में। That's dance.

सोका व्हाट सी वांट सुविधा लोटो लेके जाए, क्या पाठ है त्रिनिदाद एंड टोबैगो का सॉन्ग। सर तो तैयारियां कर दिया है, उतार के बिग गया है दोस्तों, डांस कर रहा लेट्स डांस।

हाय हाय मेरे जान मेरे जान मेरे जान, रवि सिंह एंड नादिया सिंह, दोनों की आवाज में आप ये चटनी मसाला सुनेंगे।

0: महा प्रोडक्शंस।
1: लेग डाउन मी नानी, कार्लेस ड्राइफर द्रौपदी के आवाज में आप सुनेंगे लेट्स डांस।

अबकी बार ग्रैमी अवार्ड विनिंग साउथ फ्रॉम साउथ अफ्रीका मेरियम मकेबा निहिर सीवन शास्त्र के बात है, जब ये सिनांदेश आया और उसी समय पर एक बार बना था जिससे एक पारा में और लोग तुरंत उसका नाम रख दिया था मकेबा बार। तो मेरियम मकेबा का एक सॉन्ग है लाइफ, ये सॉन्ग पेश किया गया है पटा पटा।

0: मिरियम मकेबा के बाद हिंदी बबलिंग मैशअप धीरज सक्सेना एंड नाथान। शो टाइम शो टाइम शो टाइम दोस्तों।
1: 6 million ways to die, choose one.

ला न जाने ऊंच नीच कला न जाने जांच सरस्वती माता जी जे हमको अपनी आजीर बांधे। तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार प्यार भरी दाम सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश विदेश के समाचार को सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी।

हमारे प्यारे प्यारे लोग, हम एकदम एकदम से चला जाते हैं, शुरुआत करते हैं और हम चलते हैं अपना सूरीनाम देश में। सूरीनाम देश की ओर हम जाते हैं, हमारे मौसी मौसा नानी नाना देखो भैया रूफ ओवरफॉल की ओर तो हम तो जाते। एक आदमी भैया सुतल्ला सुतल्ला भैया सुतल्ला और सुतले में होकर 12,000 यूरो से बन रूफ कर ले से नानी। तो बोलिए चोरवन कैसे जानिस के रेमिया 12,000 यूरो लेके सुतल है। तो एगो 25 बरिस के आदमी आई एल जो है रविवार के यानी सोनदा के रात के कोकोबिया वेख में सूरीनाम देश में ओके सबन ऊपर फाल करी से भैया खमस कर द क्रिमिनलन खवापन 12,000 यूरो से चोरवन धनी हो गए भैया। और ये आदमी रोवे है मोड़ी पे हाथ धर के बोले है फॉर नूमन वर्ड कि उस सुतल रहा अगले सुतली में चोरवन ओके ऊपर फाल करी से ओकर घर में ओकर कवाड़ी तूर के भीतर गए है। और बोले ना द ड्यूरन फॉर वोनिंग वार वेल देख मार नीड ऑफ स्लॉट तू 12,000 यूरो लेके और बिना कवाड़ी तारा कर ले सूते बाटे तू सोचे मॉरिशियस में बाटे कहा रे भैया तू उ देश में बाटे इन फॉर द लंदन दार ऑफ दिस मोमेंट सो एरख नामले द क्रिमिनल दिस सोर्ट रोफर्स मेंशन मिसहैंडलन। एंड आई हैव इट ओ गहोर्ड दैट दिस सोर्ट थिंग इज ओक इन गुयाना गेबेर्ट मेंशन। आई हैव वन फ्रेंड फ्रॉम गुयानीज अफकोम्स जो यहां रहे वो भी बतावे बोले बहुत जबर गायना में भी ऐसे रोफ हुए भैया और गायना और सरनाम में इतना जबर रोफ हुए द दादस ओवर मिस्टर द हेसलाख्त ओवर बदरेक करी पिस्तौल से और ओकर 12,000 पैसा जो ओकर नख काशे में रहा ओकर बेदी लगे ओके लेके और सब छग भगे भैया बोले ना द दान फॉर लीटन द फरदाख्तन ऊपर से ब्राउन फिश पेस चोर चल गए डॉलर स्ट्रांत में रिखतन इंदिरा लैंड में सिपाही एकर बारे में ऑब्सपोरिंग फॉर आन होल्डिंग खोजे हैं लेकिन ओके का पियो भैया ब्रोम पे सब 12,000 से धनी हो गए है नानी। तो ये सब चोरी ऊपर से तुके 12,000 यूरो लेके और तू कवाड़ी ना ताला कर ले भैया तू कितना चलाक आदमी बाटे मैं बतिया ये 12,000 वाई कहाँ पाई से वरना लिखल कि बिजनेस करे कि साकमान है कि नीदल अंदर है कि बैठल अंदर एक बारे में और ना लिखल। देखो दोस्तों हम जाई है रोनी ब्रिंस वाइक की ओर रोनी ब्रंसवेक यानी एंडी यानी कि अबॉब के का बोले हैं फ्रीज समथिंग दैट एनडीपी लीडिंग स्टर्क मुस सेन आउट gekomen tegen uitspraken van रोनी ब्रंसवेक। हां एनडीपी के पार्लियामेंटेरियर जो है जेनिफर फ्रीज सम एनडीपीर है बोले उफेनी करेगा कि बहुत यामर दैट द लीडिंग फॉर हर पार्टी दिस एनडीपी के लेडर जोन है बोले नीत रियाखेर जोन आइसप्राक अबोप लेडर और बोले ऊपर से कोवालिसी पार्टनर है ब्रिंसवेक रोनी ब्रिंसवेक की एनडीपी के 18 सीटल है मैं 18 सीटल बोले आफकलो पर फरकी सिंह में नीत हीव को वोनन जोन बोले 18 सीटल से बोले ना जीता ली बात अबोप यानि कि रोनी ब्रिंसवेक बोल ले रहा तो एनडीपी के पार्लियामेंटर जेनिफर फ्रीडसम बोले एनडीपी बोले एक बार में बोले एक को अंतोत ओके ना दीज मैं भैया कभी कभी सच्चाई के आगे तो कौन चीज जाइए वहां मुंह लड़ावे भाई एगो इरलक बात है दन इस मुइलक अन यईस्ट अंतोत त खीफन रोमल अंतोत का ये आल्टाइड खीफन और नोडख रोत्सोई का ये वेल आउट हालन मैं बोले सच्चाई के आगे झूठाई साथ ना देवे भैया एक सेखनी दत ब्रिंसवेक अलमाल ही रेक्स है मैं ओम अलखमीन जही जब कभी तू सच्चाई बोलियो भैया तो आदमी थेथराई बतियाईगा बाकी ऊ ओकर संगे तेखस
spreek kali onzin kariga, maar waarheid toen akar paiga. Volgens vreedzaam heeft de Paarse Partij de verkiezing wel degelijk gewonnen en moet zij haar positie nadrukkelijk opeisen. Bolega Jennifer Bolehe en na Simons i Dusa Jennifer Bhaiya i parlementariër hega vreedzaam ke baanchit hoe he maar janta aur bole de politica sit he uitblijven die verzwakt maar wel aan een verzwakking van NDP, dat inderdaad een verzwakking en ik geef dat toe. En je moet zeggen, want als je het niet zegt, zal het ook zo blijven sudderen. Je bent de kahina vreedzaam, ik erbaar in mijn pribole, want zij is zelf een NDP'er. Te ik erbaar in mijn presentator, Jenny Clifton, bij jou Lomburgo. Limburg kabole he. Belu merkere op dat er tijden zijn geweest waarin hij ook actief was binnen NDP. En deze Bouters de leiding had. Want Bouters ke NDP ke raha. Limburg ke STV en kamat raha. Or op een april radio station Colise. En je weet mensen, de meeste media in Suriname zijn politiek gebonden. Als je de politiek doke sponsor kreeg, politiek jokere, dan ben je geen vrije media mensen. Dat hebben we heel veel in Suriname. Wel, de vrije media heb je niet, waardoor mensen alleen maar dingen in de voordeel gaan praten van zijn eigen politieke partij. Vrije media is een media namelijk dat je iedereen neutraal zonder enige belang namelijk kan interviewen en je commentaar kan geven. En dat hebben we in Suriname heel weinig mensen. De meeste media in Suriname zijn politiek gebonden en dan houden ze zijn mond dicht als ze kritieke vragen moeten gaan vragen bij een politieke partij of ergens anders. Op alleen ja, ook bij de NPS was dit in de periode van voorzitter Rodus Venetiaan het geval. Partijen kwamen dan sterk uit met een tegenverklaring. Toen ja, betaalde het dosto, nu dat wel gebeurt en de NDP-leiding het ook nog accepteert vanuit de coalitiepartij, betekent volgens Kempke en de NDP inderdaad zwak, baba. Ja, bouwt zwak, hè. Beloot tegen aan wat jij pawehega. Ronnie Brunswijk, John Etrabarka Bolisega, kito Atala Seitel Leke NDP, toen Najitle Bate, want Hamlun Tor Saddeli Bate, Taptoai President Ban Lebate. En dat is ook de waarheid, mensen. Vreesaan heeft de NDP wel de parlementariële meerderheid en moet de partij haar leidende positie binnen de coalitie duidelijk laten gelden. Toe je baantje te horen, de NDP, bolle de partij heeft het ook, moet ook dat opeisen. Toch maar de janta, je ze bebaant aanplukken. Suriname desi Suriname ke samachar ko hum sunate hai. Ab dekho bhai, ek laik bahi ke gail hai, ego badreif hai, u hai Tutli Fou kanaal weg me volgens mij bhaiya hiya likhale Tutli Fou aur kanaal weg na likhale to samme chahi bole ke ichi yua hai ga sin meester chilcher weg me ego badreif hai Tutli Fou. En hoe heb ik een leek milke geil he, en ik een Hindustani ke bhaiya. Het leek is besmeurd met bloed. Koen ook heel Allah. Diverse instanties zijn ingeschakeld. En betalen he, ki houtuin ke, de politie houtuin ke, kerbarem khoje he. Ek Hindustani, jo laatst hoe ik era 84 jarig admi. Ook een namba Roop Narayan Raghunath bhaiya. I Tutli Fou middenweg me rahat raha. En sanitcher ke 10 tarik oktober ke, u ghar se vertrek bhai le. En kabhi loud ke na aail he. En bole he ga, u gekleed in een rood t-shirt, of een zwarte pantalon, of ook er een laag jijke middel heeft, tot het niveau met wat jij op bedrijf legt. Toe je baant heeft. Hamara Suriname ke te bari dukh ke baat hai to jo parivar hai parivar jo hai Raghunath aapke dukh mein radio fahun jarur shamil hai to hamare janta aur aage hum jaye la hiya ego
फोटो है भैया एगो फोटो है ओ मलिच है भाई ओ फोटो ने देखन टॉयलेट पोत है एगो फीस बाक है भैया और फ्लूर तो तीखल करल इतना नासी गोरे वामी के पाकी अलिच मलिच सब बिगल है टॉयलेट एकदम मलिच है भाई ते एकर बारे में बोले जग जर बंधन का बोले है जर बंधन बोले कार्त स्लेक्ट आर्बेट ओमस्टांडिगीन बाय डिफेंसी आन ते डिफेंसी के फोटो है भैया ते दयाने दया दयना ले जोन है अमीरानी जर बंधन जेनिफर सिमोन के फोटो हुआ दिखावे है और बोले एकर बारे में तू हमसे बताओ जो सानितेर हैगा सानितेर हैगा खाई जोन है फिनाशील पोचिसी है डिफेंसी कम करतन के बोले तू ताक कितना स्लख्त जेनिफर बोले एकर बारे में बोले तू अब तू बताओ कैसे ये चीज हो सके है बोले यहाँ हम तो कब भवेश दिखाएला तो 12 तारीख अक्टूबर के जरबंधन जो ने डिफेंसी मात्स्कापन के फर्स्ट केलंद बोले गए ले मेमरे ब्रुकु का सरना में बोले सब देखी से और फोटो बनाई से और बोले हुआ के सानितेर जो नहींगा फोर सीनिंग जो नहींगा बोले अंदर मात सेगा बोले हैगा फोल्क जरबिंद जरबंधन बोले ब्लैक आइड फोटो दर द टॉयलेट एंड बपाल डिफेंसी लोकांसी इन सोल सेक्स द स्टार्ट फॉर केयर दैट मस्क अपन सेल्फ वाटर मुटन शोवन ओम देसना खबरें दूर तो स्पूल दर ना सौदर द अनफोल्डिंग स्कूनमार्क मिडलन beschikbaar zijn om die sanitaire ruimte hygiënisch te houden to lantieke chije bhaiya defensieke chije hai abbe koi orlog aa jayega tab toilet kahan damien jaye bhai hansi to ye maant hamara defensi mein hai defensi ke rigal se bhaiya ki jo uniform mein to ke chahi apan joota putsa kare ke chamke ke ye uniform moet schoon netjes uitzien aur sanitaire de hua dekhiyo bhaiya te 1 kilometer door se gandha है छाट भी कर दियो भाई जरबंधन वेल फंड रखेरिंग वीटन ऑफ शे ऑफ द हुक्ते इस फंड ओमस्टांड खीने एल वेलकम मात रेखले वर्ड द कंट्रोल फॉर ओम द सिन सैनिटरी फोर्सिंगन ते रिनोवेर एंड स्ट्रक्चरल स्कोन टू होल्डन ते बोले बहरे खप चमके भैया अ टॉयलेट में तू बैठ ना सके हैं ट्रैक ना कर पिए सबन बल्टी से लेके जा टॉयलेट में भैया अब्बे श्रीलाम हमार काई बरीसन पुराना खीने रात से चीज लेके चले हैं फूडिंग टाइजन जी नाजे सैनिटरी फोर्सिंग जरबंधन बोले है बोले खाई भी चाहिए हुआ पर वेक पर्सनल के मुंह से देवे के मच कापन स्प्रे कैन फोकस हार इन वार देर इट फॉर फॉर बीट इन द माल ते दी 12 बजे और बोले हुआ पे मिले के चाहेगा सवेरे ईटन एंड ड्रिंकन ओखतन फन वार अन अन फोर आफत हर फातन फरसुक ओबेलोन फॉर होकिंग ओ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द डिफेंसिव पर्सनल बार्ट है देना लिट सोर्खन और बोले देना लेर फर्दीनन डिफेंसी मास्कपन रेस्पेक्ट वार्ड एरिक फन बांसेस फोर्सिंग तो ये फोटो देखियो भैया तो छांट हुई हम जाए है भैया तरी पेल के फोर्स से तर जो रहे सोमो हार जो भाई बोले वो उन्हें प्रोजेक्ट बोले मांडलेक्स अफ्लोसिंग फन $100 यहाँ लिखल है तो सुमो हार्जो पार्चा लहूर के पेयल के का बोले के गो वूनिंग प्रोजेक्ट है बोले है मुखल क्रेखन से एक वूनिंगन बोले मांडलक से अफलोस करी 100 अमेरिकन डाला बोले अफलोस करी पॉल सुमो हार्जो बोले है इनिशिएटिव एन इनिशिएटिव opgezet in kader van het 50-jarige bestaan van de partij. En bolle sommo hardo bolle he ga partij zal fungeren. Het project is naar zijn zeggen toegankelijk voor de Surinamers die alleen voor partijleden ke he. Die partijleden he ga usab $100 per maand bhari ga i woning bouw project ke bhaiya aur jo oise kariye to sowieso to ke jai sommo hardo ke stem kare ke bhai tab तो देश चाहे चूली भक्कड़ में जाए मैं तो 100 रुपया करवाए तो चाहे ओके करेगा दत इस अलमाल ने बदुने इधर इन के इग्नार से एक पार्टी में से दत जो अब मैं मुझ का स्टेम मैं आज से इन बलंग फन अलगमीन लंच इस ना वर्ड वेनिक एरान गदान में से फोल्ग सो मोहर जो कुन गे इंटरेसेर्ड इन विया एन ओवरइन कॉम्स मेट द बैंक फिनेंशियल इन आन फ्रागन वोनिंग फॉर गेसिन एंड यंगरन द गप्लांडे वोनिंगन मुटन ऑन द मेयर 2 स्लैब कामर
ego woonkamer, koekoe, badkamer, toilet, Tjahinga, Somohar. Dus stel dat de partij verder wil kijken naar de eerste groep van 100 woningen, gezien de woningbehoefte in Suriname. To i project kebarem hega, boleki, aise aise tulun karsako hai. To ye baat hai, hamare pyare pyare, meetha meetha janta. Gayandien haalt uit naar plein na weigering schorsing voor Ramsukul in DNA. Vugt Ablonjano VHP ke fractieleider Assis Kumar Gayandien bole voorzitter hega of bole hega en voorzitter van de Nationale Assemblee ke bole he ook een naam ba Ifanildo plein ke bole un namoi handel karisega of bole hega ouro bole hega vergeringwa bole na schors karisega handel doen een verzoek die ego korte schorsing de af te wijzen. De schorsing was bedoeld om VHP parlementariër Kiesje Ramsekool alsnog de gelegenheid te geven zijn spreekbeurt voor te bereiden nadat de sprekers volgorde onverwacht was gewijzigd. Bole bina verwacht kere, bole go spreker jona, bole chiwa wijzig karte te bole koke even timde, ki bole go chota scoresing de voorbereid kariga, or bole hega gaya din bole se duidelijk afspraak hega, ki volgorde waarin parlementariërs het woord zouden voeren, eerst zouden de leden van commissie van rapporteurs aan het beurt komen, gevolgd door de overige parlementariërs, de parlementariërs, men via hoe hardem te doen de keer, bina regels se kam hoe en dat gebeurt dit soort dingen. Ramsekool bole he ki us samay pe gaya din fractiekamer mein raha waar hij bezig was zijn bijdrage voor te bereiden. Toen duidelijk werd dat de twee andere commissieleden niet zouden spreken, haastte hij zich naar de vergaderzaal. Gayadin vertrok daarom om een korte schorsing, zodat Ramsekool zich op het spreekweer kon voorbereiden. Plein, die op dat moment de vergadering leidde als plaatsvervangende voorzitter, wees het verzoek echter af volgens VHP-fractieleider op de Kobolevia. De toe verzoek me leed aan deze, omdat hij op dat moment namelijk de voorzitter was van de DNA. Op de kop bij een man met revolvers, pistolen leken bij een 10-33 laaibole scherpa patroon, bolle illegale goud aangehouden in Klaas Greek, Sonabi Okerpas Paisse, illegale Sonabi Paisse, Sipai Klaas Greek met bij een pistool 33 go orug illegale Sona, ego Toyota Fitz bestuurder aangeduid met de probeerde te vluchten toen het merkte dat hij de woorden Abu Bhagemangi zei, maar dat ook gezien bij Kabul RBTM ke regio bijstand in midden ke ook in de oorijke pakkelijse. Bullen toen de bestuurder besefte dat ze zouden worden aangehouden, zette hij het op een lopen. Dat de kiskers kon toen het oude pakkelijke zoek is, doorreken bij ja, doorke bhagis, maar de politie wist hem enkele tientallen meter verder op achter te halen. Ook een pakrisje. Op het tijdens een verhoor verklaarde dat ook er pas pistool he. Op het paramaribo met ugeil heeft kinise gekocht om zichzelf te beschermen. Uit de verder politieonderzoek zou daarna zijn gebleken dat de verdachte het aangetroffen goud op een illegale wijze in zijn bezit had gekregen. Maar ja, de abtu ijaiga gana gawe toen te samajgele kahan gana gawel jahe bhaiya. Na plata hukupe. Hem jijle bhaiya econoom Winston, Winston au Ramautar zinke oor hem jij he. Ramautar bhaiya kritische op de jaarrede Simon ke concrete doelen in de financierings ontbreken. Hier betaai gij he econoom Winston Ramautar Singh. Finie kareke jo raar jaar rida bhele aur ukari se hum log ke president Jennifer Simon aur bole hai hearings bole onvoldoende duidelijkheid kari se ke jo concrete resultaat kari regering ke bole wil bereiken en hoe zij haar plannen gaan financieren bole volgens hem blijven de aankondig beleidsvoornemens de vrij blijven zolang meetbare doelen in de bijbehorende begrotingsmiddelen ontbreken.
तो ये बात बोली सेगा एक नो विंस्टन रमौतार सिंह बोली सेगा जेनिफर सिमोन के बोले दुईलक है ना है रमौतार सिंह प्लास दनास फ्रागटेकंस बाय द रोल फॉर द कैबिनेट फॉर द प्रेसिडेंट बाय द uitvoering van de regeringsbeleid उफेनी करे हैगा कि जो वर्कग्रुप है जो प्लेटफार्म है वो verantwoordelijkheid van de minister niet mogen ondernemen. तो दोस्तों अभी हम आपको और समाचार को सुनाएंगे और हम सोचे आपको एक गीत सुनाई दे तो अभी हम

Orieta Savita Zindustu, jo mehma man ke aaye is nagezongen, lied jo aapko hum zuna diya hai, to abhi hum aapke aur kuch geet ko jarur sunayenge, hum chalte hain और आगे को अपना समाचार को लिख रहे। हाँ दोस्तों, तो तेलवा कब निकरे, तेलवा कब निकरे कि जनता बोले हम अपन जीवन अरमोई चलाए थे। एकर बारे में भैया एनपीएस के को पार्लियामेंटारियर पोतीनी आतो पाई भैया बोले है गां बोले द्रेखंद आन कोमंद ऑन्टविकलिंग इन द ओली एंड खास सेक्टर फर्स्क्रिकलिक गफोलगंत है बन फॉर सुरीनाम बोले तेलवा जा निकली गा तो बोले देखिए कितना बड़का बड़का गफोलग फर्स्क्रिकलिक गफोलग हो योकर बारे में फरंदरिंग कौन क्यों हुई बोले धनी आदमी धनी हो जाए गरीब आदमी गरीब हो जाए ओकर मतलब ही ऐसे है। सुरीनाम बोले सुरीनाम बोले है वो फॉल्कस हम साल द ग्रुप रेक मेंसन क्लीनर वर्डन टरवेल द ग्रुप में आर्मन यही साल ग्रुइन बोले हैगा जो जो जो गरीब है और ज्यादा गरीब हो जाएगा और बोले हैगा द क्ले द ग्रुप रेक मेंसन क्लीनर वर्डन बोले है साल फर्स्ट्रिकलिक चेन इन सुरीनाम में ओली एंड खांस बोले एकर बाले बोले पांच को होटल बने भैया 10 को हाफन बने हैं बोले जो धनी आदमी है Rijke mensen zal kleiner worden terwijl de groep van de arme mensen groter zal worden. De goedkoopste perceel in Suriname subsidioon sasta rahega ka bole hega en jagha admi ke bole jahan pe bole jahan met licht water en verdade weken nahi bole shuru hega 22,000 euro se bikai ke bole ke oke kin pai ekar bare mein तुम पाई बोली से बोले धनी धनी हो जाए गरीब गरीब हो जाए बोले द पॉलिटिक द पॉलिटिकस फॉर द आन कि बोले जो जगह जमीन है ऑन रूरल खुद सुरीनाम में बोले 15% omhoog is gegaan बोले het gevolg hiervan is dat meer mensen het moeilijker zullen hebben इकर बारे में प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन बोले aangeven kennis कि सुरीनाम में बोले onvoldoende is voorbereid कि ontwikkeling जो 2028 के बाद है worden verwacht atom pai बोले है regering tijdig beleid moet maken om de gevolgen van burgers draagleker te maken. Dus toe, zo pleit hij ervoor dat tarieven, je stroom, paniek, marktcomfort vaststellen, je subsidie uitsluiten worden versterkt, die burgers deze tarieven niet kunnen betalen, verhoog je. और बोले है मैं दी 23 साल में है सीन है बे बखरेपन वर खाद नीर खमाकलक सेन है लंच साल मोय जैन अन देल साल ओक्लुकलिंग जैन मार खदेत ल फन मेंसन दी है मुइलकर हैवन ओम सिक टू रेडन इज नीट ओम नार हुइस टू स्क्राइवन तो ये बात बोले है अतुम पाई अतुलन जानो भैया इतना कर्जा दिसवा में हुई गे है 2028 से जे तेलवा निकले देर तक तक तो खाली कर्जा भराई भाई खाली कर्जा भराई और जब कर्जा भराई तो देश कहां से हम लोग के चमकी लात वे होप दस ओंस रखेरिंग अन खुई प्रोग्राम माक में से ओम दित अलमाल खुद ते लात को लोप एन नीत अली मा देंक अत कोम खुद अत कोम खुद अत कोम खुद सो वेरक्त इतनी में से ये मुत इत वेल goed gaan voorbereiden. Drive-by shooting. Schutters vluchten in 2 voertuigen. Bhaiya chalte mein dagawal bhaile Suriname desh mein hamara nani. Chalte mein 2 admi atwar ke bhaiya. Bole foreign warning. Leonard Belstraat mein. Bole hega chalte mein atwar ke 2 mannen se zondag beschoten. Terwijl zij zich voor een woning aan de Leonard Belstraat in Suriname van ghar ke aage 2 mila khada raha. तीन मिला चल ओ तो लेके जाए चलते मी सबके दागी से मां सबके मीसी कर दे भैया लैया ना लगल है फोल्क द बस के बार इंफॉर्मेशन स्कूटन द 3 मानन
beurtelings met de revolver in de richting van de slachtoffer. Bullet de beschietingen vluchten zijn twee voertuigen. Ik hoor grijze Lexus Ra, IS en grijze Toyota Fit van een nieuwe model. Zij reden weg in de richting van Samuel Finok straat mee. To je bhaiya dekho Suriname desh mee. Chalte mein bhaiya ghar ke aage khada hue to zarur ema कुछ रहा हुई सोमार थोड़ो ऐसे कोई दागी ना नहीं सोमार ऐसे कोई ना दागी के जरूर एमा कुछ मेद मतभेद भइल हुई तो ये बात ना है हमारे नानी अब देखो भैया सीडोर्फ के सब कोई जाने हुए फुटबॉलर रहेगा इंटरनेशनल फुटबॉलर रहा हम लोग के नीदरलैंड के नेशनल फुटबॉलर और बोले सीडोर्फ के परफॉर्म आने का कि हना हाईवे पे भैया एको सीडोर्फ फुटबॉल फेल्ट है हम बीते हुए साल गए नहीं देखे भाई खाली भूस लगल है डाम कंती भाई का बोली हमने ये स्पोर्ट हो एंड इट इज सो मोय gemaakt man en ik vind het zo erg zonde कि ची वक अंदर हो उतर स्लाख्त है सीडोर्फ वर्ड होफ ट्रेनर बाय द ब्रासियांस क्लब कोर्टिंटियंस भैया अब सीडोर्फ जाएगा ब्राजीलिया के क्लारेंस सीडोर्फ के बाद बतियाला अब ही जाएगा ब्राजीलिया के हुआ के एगो फुटबॉल फरीनिंग है कोर्टिंटियंस लिकल है अन डिग्रेडेशन हो दर 50 यार का आउट इंटरनेशनल इस आंकस्टेल अल्स होफ्ट्रेनर फॉर द क्लब फॉर द मेम्फिस डेपाई एंड सकारिया लिबाई Zijn contract loopt tot 2027. Toen het moeilijk is, sport ke baare mein. Toen hum bahut kam bolte bhaiya okar baare mein. Aur koi log hai jo apna program ko manate, lekin ye news hai. To uske baare mein hum jarur kuch bol dete hai. Hamare sunne walon, hamare pyare pyare janta, jo aapko hum इस समाचार को रेडियो फाहन के माध्यम से सुनाते हैं और सुनाते रहेंगे हमारे प्यारे प्यारे जनता हम चलते हैं भैया शर्माकारी फिर में तुल जानो कितना मछली मर गया ओकर बारे में पता चलल क्विक फुएक ओमा रहा अब देना ले जो है प्लेन विल वेटन कि के फरांतवर्दलक हैगा शर्माकारी फिर में जो उतरा फरखे भइल हां और सिमोन तो बोले रहा कि एगो बदरेफ है एकर बारे में ब्रिंसवाइक बोले रहा बदरेफ बगलिए में मछरिया जिए हैगा तो कैसे जाए के शर्माका मछरी मरल है दिस इज ऑलमान ऑन द लुक थिंग चेस सब जिन्ना मछरिया ले गए रहा फ्रैंकरेक में कहां गए ऑन द सुक करे कि कैसे से मरल हां ब्लैक बैल है पनिया शर्माकारी फिर के फरफेल हो गए रहा जे मैं बहुत ढेर क्विक क्विक रहा भैया अब एकर बारे में एनपीएस पार्लियामेंटारी इफानेलो प्लेन जो है बोले हम दैलकहित मांगेला ओवर वी फ्रंटवर्डलिक फॉर द फरफेल van de Samakarivier in Suriname willen herstel dat de veroorzaker moet opdraaien voor de kosten van de schade en gevolgen van de getroffen gemeenschap. Plein reageerde hiermee op de voedselpakketten

चाहे अंदर क्राई कर दे भैया आप देखो अलबीना की ओर हम जाएला भाई मान एक आदमी पकड़ के बन करी से बदराई करी से अपन बहिन के वो बोले हप बहिनिया के बोले दीदिया तो के हमें जान से मार दे एकर बारे में अलबीना की सिपाही जाए के बदराई किंग के पकड़ी से और बतावे हैगा बदराई किंग भैया अलबीना में और पकड़ी से है सौ से जिस एन एंकल अंदर फैमिली लीडर हेवन बदराई और बोले मेल द पुलिस इन ओस्टन फन सुरीनामे 21 सितंबर के गो आउट ऑफ एन एड्रेस इन अलबीना और बोले द फैमिली लीडर फ्रीज देम फॉर हुन वेलिगेट एस्काकले नेचुरली भैया सिपाही के जो कोई तो के बदराई करी ना मुझे सीकर है de hulp halen van de instanties om jezelf veilig te houden. तो ये बात है हमारी जनता 13 बरिस के लड़का भैया मैं ट्वीक स्टीक बोंद न सिकर है लड़त रहा 13 बरिस के लुंडा भैया सबन ओके भूख भांग दे से जानता और ये लड़का के सबन सिपाही यानी कि सिकर है इसमिली के कर दे से अभी आप लोग को और समाचार को हम सुनाएंगे. हम चलते हैं एक की नवरात्रि का

हम चलते हैं। अब देखा जाए भैया देयना ले जोन है श्री नाम का, बोले है देयना ले स्लात अलार्म ओवर मोगलक कुल प्रॉब्लम इन लेकर हुईस एमएमजी में भैया जो नहीं जहाँ पे लेकर है सेगा, बोले वहाँ पे जो ठंडवावे है जो कूल सिस्टम है जहाँ लाश धरा जाता है लेक है, बोले वहाँ पे बोले कूलिंग ना मोई है। हम जानी ला एक जमाना में सुरीनाम में हम रही तो गंधात रहा हुआ भाई अमदर कूल सिस्टम हुआ ना मोई रहा और वही चीज हुआ फिनो है दे ना ले रघुनंदन जो है द्रिंगत और फैलद्रिंग मांगे हैगा कि जो कूल सेल जो लेकन है निकेरी में है मुंगरा में जिस सेंटर में निकेरी में बोले है ऑन बफेस्टिक्ड बरिक्टन ओवर बवार ऑनस्टाखेर फन लिखामन एंड नाबस्तांदे दी हिर ओवर लीडन दीर बारा नोग नीट सौदन हेमन कुनन जीन दैट लाइक आउट दैट ब्लेक्ट आउट ऑफ फरक्लारिंग नौ तारीख अक्टूबर के और बोले हैगा बोले स्लाख्टोफर फन स्किट इन स्किट इंसिडेंटन जो आठ तारीख जाने दुई मिला दगा उल कर ले रहा तो दुई मर्दाना अप्रेम दगा उल कर ले बैठो फ्राउ के पाच भैया और बैठो फ्राउ निकेरी मुके अप्रे आदमी रहा Zij zouden sinds die dag herhaaldelijk zijn gevraagd later terug te komen. Zoekerman kees op hun geil hem. Ook de kies hega bijaki. Bole hega koelsysteem hona kama hem. Bole het daarna zou de beschikbare koelcel vaker uitvallen. Als dat klopt roept dit vragen op over de onderhoud van de betrouwbaarheid van de installatie. Een parlementariër bole hega direct bekend is terugkerende storingen. Oor je ze bewaard in Suriname. Dus kejanta hem jail. भैया सुरीनाम में बोले हैगा विस्कुंदे बायोलॉजी से लेरकराख्त ना है भाई ये फ्राउ मिस्टर जो रहा जो बायोलॉजी से लेस देवे है बोले वो बहुत कमती है मिनिस्टर जो बात दे रख क्यूरी फन अंडरवेज वेटस कपन कल्चर के बोले है को लिखास अनस्क्रीवन मेथड फॉर सूप मेथ हेड फरसूक बोले हैगा कि बोले हैगा अने बोले हम कोली खास बोले हैगा बायोलॉजी लमाई फिर खुद कहीं के मेंसे कौन सी बोली से यहाँ बायोलॉजी विस्कुने लेर क्रांत तकरत है ग्रोथ तकरतन अंदर बाय हेड फीओई सेल फॉल्कर मिनिस्टर बाय द फॉल्कर फैक्टन विस्कुने biologie, tekeningen, lichamelijke opvoeding en natuurkunde bolle de grootste tekorten op een jaar in Suriname. Ja, als je en heel veel mensen die zijn niet goed opgeleid, toch hebben ze door politieke partijen bepaalde functie gehad die niet goed gaan mensen. En hier kan je op school niet zetten. Je moet wel de vak weten om de les te geven aan onze kinderen, mensen. Trump, caboletos, tot Trump wil excusitie doen van massamoorden live uitzenden. VN spreekt van afschuwelijke plan. VN bolle naboletje van Natja Hinde Kavik. Oor Donald Trump bolle he. 10 tarikh december ke bolle excusitie doen van een voormalige leider psychiater Nidal Hassan. Bolle rechtstreeks uitzenden kreeg van een media platform. Hassan werd ter dood veroordeeld voor een schietpartij op de Amerikaanse militaire basis 2009 mee, waarbij 13 mensen om het leven kwamen. Het voornemen heeft internationale grote verantwoording veroorzaakt. De Verenigde Naties willen noemen het plan afschuwelijk en plaatsen vraagteken bij de verenigingsbaarheid ervan bij de internationale mensenrechten gebaren mee. De Kobaya 385 kilo een paar bouw Let race John importeer bij Lega. Bhagwat Prasad Ramdin is inmiddels van boord gehaald in Nikeri en overgebracht naar het terrein van de faal. Op het oude een deel van de race was vrijdag al gelost, terwijl de resterende hoeveelheden maandag haven mee uitvoerbeelden. Ook er waren met Sipahi, John Hinga, politiebewaking, John Landbouwke, LVV, economische zaken. Orbole ondernemerschap van de technologische innovatie zijn bij de invoer verschillende wettelijke voorschriften overtreden. Betijgen het dus door, bole Chaurua, John Aile, voor ijskere toestemming tegen Surinaamse leweke. Binnengebrachtstellende betrokkenheid.
ये बात है हमारे प्यारे प्यारे जनता। तो ये सब समाचार आपको निकेरी का है हमारे प्यारे प्यारे सुनने वाला अल्बर्ट थाई में भैया बड़का स्टोरिंग भैले वी द एप वेबसाइट ऑन द क्लांत शेरिफान द अल्बर्ट थाई probeer te bereiken. Heeft pech ook Mangerwaar ke winkel online niet bereikbaar. Hij barka storing hai dosto. Aur bataye gaye hai Indiaanse ambassador jo Suriname mein ba jekar naam ba Subhas Prasad Gupta 12 tarikh oktober ke afskeid le se president Jennifer Simons ke bole tijdens de diplomatieke missie die in augustus met Waila Gupta zich ingezet voor versterking van de betrekking tussen Suriname en India. Ambassadeur kijkt naar eigen zeggen met de voldoende terug op zijn periode in Suriname. Hij overschrijft zijn verblijf als een aangename en verrijkte de ervaring. To ye hai Gupta bhaiya ja hai dusar koi aaye natuurlijk mensen plaatsvervanger. तो जनता हमारा समाचार यहां तक था आज के सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राम राम नमस्कार और प्यार भरी आदाब सत श्री अकाल जॉनी नंबर वन है हमारा नाम

और तेरे दरबार में मैया खुशी तो जरूर मिलते है। और दोस्तों नवरात्रि का ये स्पेशल सॉन्ग हम आप लोग को सुनाते हैं और यानी हम अगले गीत की ओर बढ़ते हैं, यानी कि नवरात्रि सॉन्ग की ओर। नवरात्रि स्पेशल सॉन्ग हम आप लोग को सुनाते हैं।

महिमा। और ये सब नवरात्रि स्पेशल सॉन्ग हम आपको सुनाते हैं और अगला भजन के ओर हम जाते हैं। वो एक गुजराती हैप्पी नवरात्रि जो है।

दुर्गा माता के और भवन जो है वो तो सदा प्यारे लगते हैं और खूब सजाई गई है। तो नवरात्रि स्पेशल सॉन्ग हम आप लोग को सुनाते हैं और जितने भक्त लोग हैं आप सबको हैप्पी हैप्पी नवरात्रि यहाँ से कहते हैं। अगला भजन की ओर हम चला जाए।

अम्बे माँ नवरात्रि स्पेशल सॉन्ग हम आपको सुनाते हैं हमारे दोस्तों। तो हम चलते हैं अगला भजन की ओर और वो क्या है आप लोग खुद ही सुनिए। ये एक माता का भजन है भोर बई दिन और आप आइए अम्बे।

मेरे अम्बे और यानी कि स्पेशल नवरात्रि सॉन्ग आज हम आप लोग को सुनाते हैं। नवरात्रि के उपलक्ष्य पर हम सब का नौ दिन का और महा यानी कि नवरात्रि है, तो हम चलते हैं अगला भजन की ओर।

और नाचो बेटी नाचो, ये सॉन्ग है मारी जोसी जमीर और ये गीत है नाचो बेटी नाचो और ये है भोजपुरी सॉन्ग। और इसके बाद हम एक और भोजपुरी सॉन्ग के ओर जा रहे हैं, मॉरिशियस का ये सॉन्ग है हमारे दोस्तों। तो हमने सोचा कुछ सुनाए, अभी वो जा रहे भैया माया कर ले मेरी जान, सेगा भोजपुरी सॉन्ग है और ये भी है का बोले है भैया मॉरिशियस का, हो बूढ़ा मत करो बूढ़ा है शैतान यहां पर लिखा भैया, तो हम बोली बता दी चलो सिरा जाए।

0: कर ले मेरी जान, कुछ भोजपुरी सॉन्ग आज हम लोग आपको मॉरीशस की सुनाते हैं। मजा कर ले मेरी जान, फिर से ना होगा जवान, हो बूढ़ा मत करो, बूढ़ा है और वो है शैतान। यहाँ पर गीत के बाद भैया हम ना बोलेला, उसके बाद हम जाते हैं सोना नयन के कौन फुलवा कौन फुलवा, ये भी एक गीत है भोजपुरी का, आओ मिलकर सुना जाए।
1: अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो, अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा, जब घर की चौकट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या होगा, जब दूध से मुंह जल गई तो, अरे माथा फूंक कर पीने से क्या होगा, जब दूध से मुंह जल गई तो, अरे माथा फूंक कर पीने से क्या होगा, जब

और कौनो फुलवा के ये गीत है दोस्तों, कुछ आज कुछ और आपको हम सुनाते हैं। सोना नयो गमत और कौन फुलवा का ये जोंग है जो मॉरिशस के लोग इस गीत को गाया है और बहुत खूबसूरत से गाया है। तो आज कुछ एक्सक्लूसिव सॉन्ग आज हम आप लोग को एक घंटा सुनाएंगे और उसके बाद दोस्तों कुछ और सॉन्ग आप लोग को हम सुनाएं। तो हम चलते हैं लंगारों के ओर। लंगारो बॉयस है एगो भोजपुरी का और वो है भी मॉरिशस का। आओ सुना जाए ये क्या गाया है।

और हे लंगड़ों के बाद चीज को छोता है हमारे दोस्तों। आज कुछ भोजपुरी सॉन्ग मॉरिशियस को आपको हम सुनाते हैं, कुछ एक्सक्लूसिव सॉन्ग आप लोग को हम आज सुनाते हैं। और तो आज हम आप लोग को भोजपुरी जोन से मलामाल करेंगे कि कमरवा के कुछ गीत है दोस्तों। और ये कमरवा में क्या क्या होता भैया आप खुद ही सुनिए। काम करवा

जी काम करवा, ये भोजपुरी सॉन्ग था मॉरिशियस का। दोस्तों अब हम चलते हैं एक भोजपुरी सॉन्ग, वो है हमारा भारत का, इंडिया का भोजपुरी सॉन्ग। अब मिलकर उस सुना जाए।

0: प्यार करे खाती जांग के मोटा भइल और सीना के चौड़ा भइल जरूरी नहीं है, दिल बड़ा होके के चाहिए।
1: अपने आप के बहुत बड़ा आशिक समझ ले, चल तो साबित कर।
2: और ऐसा बड़ा नाचे ना माचिस, ये भी भोजपुरी है, ये है इंडिया का भोजपुरी दोस्तों। और आज हम आप लोग को श्री भोजपुरी ही एक घंटा को सुनाएंगे, और उसके बीच में हम जा रहे फिर एक भोजपुरी जो मॉरिशियस का है दोस्तों। आओ सुना जाए ये क्या गाते हैं।

और हेलो कमरिया फुला के, और क्या क्या ये गीत को ये आदमी कितने खूबसूरत के गाकर सुनाए हैं। आओ ये गीत को और सुना जाए।

और माटी बड़ा अलमोल है दोस्तों, और ये सब गीत हमने कभी सुना नहीं है, तो आज मिलकर सुना जाए।

और मुरिका मुरिका के कुछ सॉन्ग है दोस्तों। यहां से आपको हम इंडिया का कुछ भोजपुरी सुनाएंगे। पवन सिंह काजल रघवानी का, प्रियंका ने इसमें काम किया है, जोंगफान ने छलकाता हमरो जवनिया।

चल चिखले जवानी, तो जवानी के बाद हम फिर एक सोन लेकर अभी आएंगी दोस्तों। और वो सोन क्या है, जोश में आके होश मत गाइयो।

उसमें के और जोश में आके और आगे चला हो भोजपुरी सॉन्ग। और ये है हमारा मॉरिशियस का ये गीत है जो राजकमल चिंता मुनि ने गाया है हमारे दोस्तों। यहां से और आगे हम चलते हैं राजकमल की ओर, फूली गिरी।

थोड़ा प्यार और थोड़ा प्यार न करियो तो दोनों मर जाएंगे। ये काम ना करना भैया, ना करना, मरने वाला बात क्यों करते हैं, जीने वाला काम करो। जैसे किताबों बहुत है, किताबों बहुत है, शाहरुख खान और शिल्पा कहते हैं, आओ सुना जाए क्या कहते हैं।

किताबों में बहुत से चीज लिखा है दोस्तों, लेकिन सिर्फ किताबों में वही नहीं लिखा है। हाँ, आजकल इंटरनेट पे लोग पढ़ते हैं तो, और उस पे नहीं मिलेगा तो टिकटॉक पे आपको मिल जाएंगे, कारण कि हमारा सोशल मीडिया जो है आज आसमान छू लिया दोस्तों। जवान से बच्चे से लेकर और बूढ़े लोग 24 घंटा वही टेलीफोन में और फिर सोशल मीडिया पे सब रखते रहते हैं, और तो कोई टिकटॉक बनाते हैं, तो कोई फेसबुक बनाते हैं, तो कोई इंस्टाग्राम पे जाते, तो कोई फोटोशॉप करते हैं, तो कोई क्या क्या करते भैया। लेकिन सब उस सब को देखो तो अपना आँख जो है अपने टेलीफोन में लगाए रहते हैं, तो कहते हैं कभी कभी दिल भी किसी चुरा लेता है, और जब दिल चुरा लेता है तो आपको क्या करना चाहिए। हम यहाँ से बताते हैं कि अगर आपके दिल गुम हो गया तो आपको कैसे मालूम होगा कि कैसे गुम हो गया है, और यहाँ से

लेकिन नजर नहीं चुराना मेरे सनम। तो ये गीत आप लोग को एक ओल्ड सॉन्ग हमने सुना दिया है और हम अपना यानी अगला गीत की ओर जाते हैं। और कभी कभी लोग भूल जाते हैं सपने साजन की में अलका याग्निक और मुकुल अग्रवाल कहते हैं कि कभी कभी भूल जाते हैं लोग। और क्या भूल जाते हैं दोस्तों? यादें भूल जाते हैं।

और मैं भी कभी भूला है और कभी याद करते हैं हमारी जनता, हमारे लिस्टनर्स, हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, और याद तो करना चाहिए कारण की रेडियो फाउन के माध्यम से इस प्रोग्राम को चलती ही जो हमारा प्रोग्राम दे आप बी प्लस रेडियो पे आप सुन सकते हैं कनाल 5B पे फ्रिक्वेंसी 100.6 मेगाहर्ट्ज पर, और नहीं कनाल 8 पे भी आप लोग सुन सकते हैं हमारा प्रोग्राम जो 24 घंटा चलते हैं। हर एक काम के लिए आप हमें तार कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर जो यहाँ के ही कांतोर का है, अलमिस्ट्रासी का है, 07-36-5-22-47, और नहीं हमारा स्टूडियो नंबर है 07-36-22-07 पर आप लोग हर जानकारी के लिए तार कर सकते हैं। और हम चलते हैं शैलेंद्र सिंह और कंचन की ओर। फिल्म के नाम है रफू चक्कड़ की ओर हम आओ मिलकर इस गीत को सुना जाए।

किसी से प्यार करते हैं तो अपना आवास उसके साथ, उसके आवास में मिलाना चाहिए हमारे दोस्तों। और जब आवास मिल गया तो उसको भुलाना भी नहीं चाहिए। ये कहते हैं द टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू और अन्नू अग्रवाल, ये कहते हैं।

और आपको हमारा यहाँ से ही है कहते हैं कि दुनिया कभी नहीं भुलाना, कभी कभी चाहत में धोखा हो जाते हैं तो वो दुनिया ही आपके काम आते हैं। हम कल चाहते हैं कि आम की कागज कोरा होगा तो उसका नाम इस पर आपको लिखना चाहिए।

हमारा दिल भी कोरा कागज का है, और अगर आपको भी होगा तो किसी के नाम उस पे जरूर लिख देना। उसके बाद हम जाते हैं, जो कोई ओढ़नी ओढ़ता तो बोले हमार नानी आजी ओढ़े, लेकिन यहाँ ओढ़नी कुछ और बातचीत हो है, जो अलका याग्नि का उदित नारायण आपको सुनाते हैं। हमारी यारो

और ओढ़नी ओढ़ के नचियो तो और मोई लगेगा नानी, यही बतिया हमारा जी नानी बोले है। और हम जाते हैं गीत के ओर, हवाओं ने कहा और क्या क्या ने कहा, आओ मिलकर सुना जाए।

मोहब्बत और मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत जो है वो बहुत बड़ा काम का चीज़ है, और कभी कभी मोहब्बत में बहुत बहुत गलतियाँ हो जाती है दोस्तों। और गलतियाँ तो हमारे लोग का भी एक हिस्सा है हमारे दोस्तों। तो आज हम आप लोग को कुछ प्यार भरी शायरी सुनाएंगे, कुछ गाना हम सुनाएंगे एक घंटे के लिए, और उसके बाद तो हमारा प्रोग्राम को और आगे को हम बढ़ाएंगे। कहते हैं, तेरे ख्याल में जब बेख्याल होता हूँ, तेरे ख्याल में मैं जब बेख्याल होता हूँ, जरा सा देर को ही सही बेमिसाल होता हूँ। थोड़ा से देर होइगे बाकी फिर भी बेमिसाल होता हूँ। तो हम चलते हैं दोस्तों, मुझे नींद न आए, आपको आते हैं, आपको क्या आते हैं, अभी क्या आएंगे दोस्तों, लेकिन आएंगे जरूर। हम चलते हैं एक पुराना नंबर की ओर।

और मुझे नींद न आए, और मुझे नींद न आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का ये फिल्म दिल मूवी का नाम है दोस्तों। अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण ने ये गाना को गाया है। और हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, और यहाँ से हम अपना प्रोग्राम को और आगे को चलाएंगे और सुनाएंगे, और कुछ शायरी एक दो बीच बीच में हम कर देंगे। और हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, हम चलते हैं, और ये दर्द की बात है। और दर्द में क्या होता है दोस्तों, दर्द में आंस गिर जाता है, दिल रोई पड़ता है, दिल धड़क जाता है। और जब दिल धड़क जाता है तो क्या होता है, आप खुद ही सुनिए।

क्या हुआ जो तूने छू लिया, और जो अगर छू लिया तो उसके आगे आपको क्या होता है दोस्तों, ये मैं क्या करूं आप तो खुद ही जानते हैं। और कहते हैं होठों पर मोहब्बत की फसाना नहीं आती, होठों पर मोहब्बत की फसाना नहीं आती, साहिल पर समंदर की खजाना नहीं आती। और आगे को हम चलते हैं दोस्तों कि कहते हैं इश्क मोहब्बत दीवानी ये बस लफ्ज ही थे, जब तुम मिला तब इन लफ्जों को मैंने मिले। और दोस्तों ऐसे ऐसे कुछ शेर आज आप लोग को हम जरूर सुनाएंगे, और हमें यही आशा है कि आपको जरूर अच्छा लगेंगे। कहते हैं फूल खिलते हैं बहारों का शमा होता है, फूल खिलते हैं बहारों का शमा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवान होता है। दिल की बातों को होठों से नहीं कहते, ये फहसाना तो निगाहों से बयान होता है। यस मींस रोगेर, फूल खिलते हैं बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में तो प्यार जवान होता है। दिल के बातों का होठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयान होता है दोस्तों। और इस बयान में हम आप लोग के चलते हैं सुबह से लेकर क्या होता है, खाना तो नहीं होता है दोस्तों, और कुछ होता है, वो क्या होता है आप सुनिए।

हम चाहते हैं सिर्फ प्यार करो दोस्तों, और हम अपना प्रोग्राम को और आगे लेकर चलते हैं। हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों कि कहते हैं, प्यार करने वालों कहते हैं कि कब तक वो मेरे होने से इनकार करेंगे, कि कब तक वो मेरे होने से इनकार करेंगे, खुद तो करके वो एक दिन मुझसे प्यार करेंगे। प्यार की आग में हम उसे उसको इतना जलाएंगे कि सारी दिन हमसे प्यार ही करते रहेंगे। यस मेंस, आज हम प्यार के मूड में हैं, इसीलिए प्यार के कुछ शायरी हो जाए। और कहते हैं कि एक पल मैं जो आकर गुजर जाऊं, एक पल में जाकर गुजर जाए, ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं। प्यार कहते हैं दुनिया जिसे, एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं दोस्तों। तो ये सब बात शायरी में लोग लिख के धर दिया है, और आज अपनी जिंदगी के कुछ बातें हम आप लोग को सुनाएंगे, और वो क्या है दोस्तों, आओ मिलकर

मेरे जिंदगी में, और मेरे जिंदगी में जब आप आए हो तो बहार बन के आए हो। और फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गाना है दोस्तों जो आपके हमने सुनाया है, और हम चलते हैं और आगे को दोस्तों। मुझे उस जगह से भी मोहब्बत हो जाती है, आप तो जानते हैं जब लोग कभी मस्त हो जाते हैं तो वो जगह नहीं छोड़ता है, जगर उसको कुछ सोचना है तो जाकर वहाँ पर बैठ जाता है, और बैठ के और जैसे दोस्तों जब हम कुछ लिखते हैं तो मुझे वो स्पेशल जगह होता है जहाँ पर हम बैठ के कुछ लिखते हैं। ऐसे ऐसे कितने लोग हैं जब जो प्यार के मूड में होता है तो वही जगह वो खोजता है, और कहते हैं मुझे उस जगह से भी मोहब्बत हो जाती है।

है, एक शायर हो गए भैया, ये हंसते हुए श्री प्यार भरे नहीं लेकिन हंसते हुए नजरे करम, नजरे करम मुझ पर इतना न कर कि तेरी मोहब्बत के लिए बागी हो जाऊं, नजरे करम मुझे पर इतना न कर, मुझे पर इतना न कर कि तेरी मोहब्बत के लिए बागी हो जाऊं, मुझे इतना न पिला इश्क के जाम कि मैं इश्क के जहर में आधी हो जाऊं। दोस्तों हम चलते हैं कि अगर आपके दिल ने किसी चुरा लिया है तो ये गाना आपको जरूर सुनना चाहिए।

और चुरा लिया है क्या भैया, दिल के बात होता है, दिल के बात होता है हमारे प्यारे प्यारे और सुनने वालों। और दिल बेस्टमैन से हम चलते हैं एक रीमिक्स गाना की ओर, यानी कि रीमिक्स भी बजाना चाहिए और तुम दिल के धड़कनों में रहते हो, उस गाना की ओर जाते हैं हम दोस्तों। अभी हम वापस आ जाएंगे।

बस तुम दिल की धड़कन में और रहते हो रहते हैं। अलका का ये गाना है और इस फिल्म में काम किया है अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी और सुनील शेट्टी ने इस फिल्म में काम किया है हमारे दोस्तों। और हमारे प्यारे दोस्तों, ये गाना है जब बारिश आता है तो ये गाना सुनने में और अच्छा लगता है। हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, फिल्म का नाम है सूर्यवंशी, अक्षय कुमार कैटरीना कैफ के, और इस गाना में, इस फिल्म में यानी गाना को गाया है उदित और अलका ने। आओ मिलकर सुना जाए, तो अभी हम वापस आ जाएंगे।

और दोस्तों टिप टिप करता और क्या करता है टिप टिप भैया, बारिश होता है टिप टिप, और जब बारिश होता है तो क्या करना चाहिए दोस्तों, आपके तो खुद मालूम होगा। हम चलते हैं और आगे को, और बचना ऐ हसीनों, बचना किससे है दोस्तों, उससे बचना है जो दिल के लुटेरा होता है उससे बचना।

फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतों निकलिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

इंसान उस कल की चिंता में डूबा रहता है जिस कल का कोई भरोसा ही नहीं है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूँ आप सबकी सेविका बबली आसरा। आज फिर मैं एक नया प्रोग्राम लेकर आई हूँ जिसका विषय है बॉलीवुड, हमारी फिल्म इंडस्ट्री। हमारी बॉलीवुड इतनी बड़ी है कि इसमें इतने महान कलाकार हुए हैं हमारे फिल्मी सितारे, और आज मैं जिस फिल्मी सितारे के बारे में बताऊंगी उसने तो बहुत ऊंचाइयों को छुआ, और वो है हमारे सबके प्रिय मनोज कुमार जी।

सुनने वालों, आज मैं आपको मनोज कुमार जी की फिल्मों के बारे में, उनके जीवन के बारे में और उनके निर्देशक के बारे में आपको कुछ बताने की कोशिश करूँगी।

मनोज कुमार हिंदी सिनेमा के एक महान अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक थे, जिन्होंने उनकी देशभक्ति वाली फिल्मों के लिए भरत कुमार के नाम से जाना जाता है। मनोज कुमार जी का जीवन। उनका पूरा नाम हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी था। उनका जन्म 24 जुलाई 1937 इब्टाबाद, जो पाकिस्तान में है, वहाँ पर हुआ। विभाजन और स्थापन। भारत के विभाजन के समय उनका पूरा परिवार शरणार्थी के रूप में दिल्ली आ गया था। उनकी शिक्षा दिल्ली के हिंदू कॉलेज से बीए की डिग्री करके प्राप्त की।

सुनने वालों, अब हम मनोज कुमार जी की मशहूर फिल्म क्रांति का एक गीत सुनने जा रहे हैं, जिंदगी की ना टूटे लड़ी।

सुनने वालों, ये जो आपने गीत सुना ये फिल्म क्रांति का था और ये मनोज कुमार जी की बहुत सफल फिल्म रही और इसमें दिग्गज अभिनेताओं ने काम किया जैसे दिलीप कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, शशि कपूर, निरूपा राय, परवीन बॉबी और हेमा मालिनी और स्वयं मनोज कुमार जी ने भी इसमें अभिनय किया था।

सुनने वालों, मैं आप सबको मनोज कुमार जी के जीवन के बारे में बता रही थी। अब उनके परिवार के बारे में सुनिए। उनके परिवार में उनकी पत्नी जिनका नाम शशि गोस्वामी है और उनके दो बेटे हैं कुणाल गोस्वामी और विशाल गोस्वामी। कुणाल गोस्वामी ने फिल्मों में अभिनय किया है और विशाल गोस्वामी ने निर्माण तथा संगीत विभाग में काम किया है। सुनने वालों,

और मनोज कुमार जी के एक भाई राजीव गोस्वामी थे। इसके अलावा भारत पाकिस्तान विभाजन के समय उनके एक छोटे भाई कुकू का दंगे और बीमारी के दौरान बचपन में ही निधन हो गया था। सुनने वालों,

विनोद कुमार जी ने निर्देशक भी किया, निर्माता निर्देशक भी रहे। उनकी फिल्मों में उपकार, क्रांति, रोटी कपड़ा और मकान, पूर्व और पश्चिम थी। उपकार 1967 यह एक ब्लॉक बास्टर और देशभक्ति से भरपूर फिल्म थी, जिसका निर्देशन खुद मनोज कुमार जी ने किया था। इसमें उन्होंने भारत नाम के किसान और सैनिक की भूमिका निभाई थी। क्रांति 1981 यह एक ऐतिहासिक और ब्लॉकबास्टर फिल्म थी, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को दिखाया गया था, जिसमें उनके साथ दिलीप कुमार समेत कई बड़े कलाकारों ने काम किया था। रोटी कपड़ा और मकान 1974 यह फिल्म समाज की आर्थिक समस्याओं और बेरोजगारी पर आधारित थी। यह एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। पूरब और पश्चिम यह 1970 में आई। इस फिल्म में भारतीय संस्कृति और पश्चिमी सभ्यता के फर्क को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया। सुनने वालों, अब हम गाने की ओर बढ़ते हैं। अब गाना फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से लिया गया है।

सुनने वालों, ये जो गीत आपने सुना फिल्म रोटी कपड़ा मकान से था। ये भी मनोज कुमार जी की एक बहुत अच्छी फिल्म थी और इस फिल्म में अभिनय किया था शशि कपूर, जीनत अमान, खुद मनोज कुमार जी ने।

सुनने वालों, मनोज कुमार जी ने कुल 55 फिल्मों में काम किया और मनोज कुमार जी की पहली फिल्म 1967 में आई जिसका नाम था फैशन। इस फिल्म में उन्होंने महज 19 वर्ष की उम्र में एक बुजुर्ग भिखारी का छोटा सा किरदार निभाया। इसके बाद उन्होंने बतौर मुख्य अभिनेता कई फिल्मों में काम किया और भारतीय सिनेमा में एक महान पहचान बनाई।

सुनने वालों, मनोज कुमार की बतौर अभिनेता आखिरी फिल्म मैदानी जंग 1985 में आई थी, जबकि बतौर निर्देशक उनकी आखिरी फिल्म जय हिंद 1999 में आई थी। सुनने वालों।

सुनने वालों, ये जो गीत आपने सुना, ये फिल्म पूरब और पश्चिम से था। ये एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी सुनने वालों। इसमें भारतीय सांस्कृतिक और पश्चिम संस्कृति का मेल जोल था कि इसमें मनोज कुमार जी ने दिखाया कि भारतीय सभ्यता कैसी होती है और पश्चिम की सभ्यता कैसी होती है, पूरब और पश्चिम। इसमें अभिनय किया था स्वयं मनोज कुमार जी ने, सायरा बानो जी ने और कामिनी कौशल जी ने। हर फिल्म में उनकी प्रिय माँ होती थी कामिनी कौशल जी, वो उनको इतना पसंद करते थे कि हर फिल्म में उन्होंने कामिनी कौशल जी को अपनी माँ बनाया।

सुनने वालों, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है ना। ऐसे मनोज कुमार जी को भी बहुत चीज़ें पसंद थी, जैसे वो अपनी फिल्मों में आईने का इस्तेमाल करते थे। उनकी फिल्मों में शीशे बहुत रहते थे, शीशे रहते थे और वो अपने मुंह के ऊपर हाथ जरूर रखते थे, वो भी उनका एक स्टाइल था। एक उनकी हर फिल्म में मुंह के ऊपर हाथ रहता था।

और उन्होंने अपनी फिल्मों में भारतीय सभ्यता को बहुत उजागर किया, दुनिया को दिखाया कि भारतीय कैसा देश है, उसकी सभ्यता कैसी है, उसके रहने वाले कैसे हैं। वहाँ पर ज़्यादातर किसानों का देश है भारत, वहाँ पर किसान कैसे काम करते हैं, और ये चीज़ें उन्होंने अपनी फिल्मों में बहुत दिखाई और देशभक्ति का बहुत उपयोग किया, क्योंकि वो देश से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी देशभक्ति को बहुत दिखाया फिल्मों में सुनने वालों।

अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों। मैं आप सबको बता रही थी मनोज कुमार की जीवनी के बारे में। मनोज कुमार जी के पास कुल कितनी संपत्ति थी? विकिपीडिया के अनुसार उनके पास करीब कुल संपत्ति $20 मिलियन, करीब 170 करोड़ रुपए नापी जाती है। सुनने वालों, संपत्ति से जुड़ी मुख्य बातें, कुल नेटवर्क उनकी संपत्ति 170 करोड़ है। कमाई का स्रोत, फिल्मों में 50 साल का लंबा और सफल कैरियर बतौर अभिनेता, निर्देशक और लेखक है। प्रमुख संपत्ति रिपोर्ट के अनुसार उनके नाम पर गोस्वामी टावर नामक एक बड़ी इमारत भी है। आधिकारिक डेटा, हालांकि उनकी संपत्ति को लेकर कोई आधिकारिक और पक्का सार्वजनिक डेटा मौजूद नहीं है और यह आंकड़े मीडिया रिपोर्ट्स व सेलिब्रिटी नेटवर्क वेबसाइट पर आधारित हैं। सुनने वालों,

सुनने वालों, ये भी मनोज कुमार जी की एक बेहतरीन फिल्म थी। उनकी हर फिल्म में देशभक्ति का गीत जरूर होता था और जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी होती है तो टीवी पर उनकी फिल्में जरूर दिखाई जाती हैं सुनने वालों। और जब तक उनकी फिल्म ना दिखाई जाए तब तक समझो कि टीवी वालों का दिन अधूरा है सुनने वालों।

सुनने वालों, मनोज कुमार जी ने जिन फिल्मों में काम किया उनमें प्रमुख हैं घर बसा के देखो, गृहस्थी, हरियाली और रास्ता, उपकार, रोटी कपड़ा और मकान, शहीद, पूर्व और पश्चिम, वो कौन थी, शोर, गुमनाम, हिमालय की गोद में, शहीद, उनकी प्रमुख फिल्में थी सुनने वालों।

0: सुनने वालों, अब हम एक गीत की ओर बढ़ते हैं।
1: हेलो एचआर, गुड इवनिंग।
2: गुड इवनिंग,
1: मीट मिस्टर भारत।
2: हेलो,
1: इलाहाबाद से आए।
2: इलाहाबाद?
3: आप कहाँ के रहने वाले?
2: लंदन का। मैं इंडिया के बारे में कुछ नहीं जानता।
1: भारत, मैं तो भूल ही गया था, ऑफिस में तुम्हारे नाम का खत आया था।
4: गंगा भाभी का
3: गुरुजी का
4: क्या लिखा?
3: आप सबके लिए शुभकामनाएं और धन्यवाद।
4: ओम, जब मैं सब बनारस से पढ़ता था उसे भी इलाहाबाद से गुरुजी के खत आया करते।
3: आप गुरुजी से कभी नहीं मिले?
4: नहीं, जिंदगी में कभी इलाहाबाद जाने का मौका ही नहीं। तुम्हारे पिता ओम से संबंध था। इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें गोली का निशाना बना दिया। मेरे घर वाले लाहौर में थे, मुल्क के बंटवारे में सब के सब कत्ल कर दिया गया। उसके बाद कभी इंडिया जाने का ख्याल ही पैदा नहीं। खैर, ये बताओ तुम्हें ये क्लब कैसे लगा?
3: अच्छा है, मगर चाचा जी, आपने तो कहा था कि ये क्लब अपने देश वालों का है, अपनापन तो यहाँ दिखाई नहीं दिया।
2: My foot, इंडियंस को अपनापन वहीं दिखाई देता है जहाँ मुरझाए हुए चेहरे और खाली पेट हो।
3: जी,
2: और नहीं तो क्या। यहाँ देखो, हर आदमी खुशहाल नजर आता है, न रोटी की फिक्र, न कपड़े का गम और न घूंघट का झगड़ा। और एक तुम्हारा देश है मिस्टर, चार रोटी में से एक रोटी कर्जे की खाता है तुम्हारा देश।
3: वो देश आपका भी तो है।
2: काली मत दो
3: जी।
2: जो देश दूसरों के रहम और कर्म पर पल रहा हो वो देश मेरा नहीं।
3: मेरा तो है।
2: होगा, तुम उसे अपना समझते हो जो मदद लेता है, मैं उसे अपना कहता हूं जो मदद देता है। तुम लोग जमीन से पेट भर अनाज नहीं निकाल सके और लोग चांद तक पहुंच गए, है कोई मुकाबला?
3: जो चांद पे पहुंचे उनके सामने दुनिया ने सर झुकाया है।
2: सर झुकाने पर फक्र करते हो, है कोई ऐसी बात तुम्हारे देश की जिस पर के सर ऊंचा कर सको? नहीं माय डियर बॉय, तुम्हारे देश ने कुछ नहीं दिया। इंडियाज कंट्रीब्यूशन इज जीरो, जीरो एंड जीरो।

जीरो दिया मेरे भारत ने, मैं भारत की बात सुनाती हूँ, भारत की रहने वाली हूँ। सुनने वालों, मैं भी भारत की रहने वाली हूँ, इसलिए भारत की बात सुनाती हूँ। पहले लोग सोचते थे कि भारत में कुछ नहीं है, भारत एक गरीब देश है, लेकिन अब वही भारत ने कितनी उन्नति की है। सुनने वालों, भारत अपने मेडिकल क्षेत्र में और चांद पे भी पहुंच गया। भारत उनके डॉक्टर्स इतने बढ़िया हैं, दवाइयाँ इतनी बढ़िया हैं, अब भारत पर अपने मोबाइल बनते हैं, उन्होंने चाइना से लेने छोड़ दिए मोबाइल। सुनने वालों, और मनोज कुमार की फिल्मों के गाने इतने अच्छे, इतने मधुर संगीत के होते थे सुनने वालों, कि उनको जितनी बार सुने मन करता है सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं। और ना सिर्फ गाने, और जो गाने वाले भी थे उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। सुनने वालों, इस गाने को गाया महेंद्र कपूर जी ने, और ये फिल्म थी पूरब और पश्चिम।

सुनने वालों, मैं आप सबको मनोज कुमार जी के बारे में बता रही थी। मनोज कुमार जी को भारतीय सिनेमा में उनके अतुलनीय योगदान के लिए पद्म श्री जो 1992 में उनको राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया और राजकीय सम्मान दिया गया। सुनने वालों,

मनोज कुमार जी को भारत सरकार ने 1992 यानी पद्मश्री और 2016 में श्री दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। सुनने वालों,

सुनने वालों, मनोज कुमार जी की मृत्यु 4 अप्रैल 2025 को मुंबई के कोकिला बेन अस्पताल मुंबई में हुई। तब वह 87 साल के थे। सुनने वालों, अभिनेता मनोज कुमार जी ने अंतिम सांस उसी हॉस्पिटल में ली। सुनने वालों,

सुनने वालों, अब मैं आप सबसे आज्ञा लेती हूँ और अगली बार फिर किसी दूसरे फिल्म स्टार, एक्टर, हीरो या हीरोइन के बारे में आपको उनके जीवन के बारे में जरूर बताने की कोशिश करूँगी सुनने वालों।

शब्दों को संभाल कर बोलें, क्योंकि शब्दों में बड़ी ताकत होती है। कड़वे वचन तीर के समान घायल करते हैं, इसलिए हमारी वाणी में हमेशा प्रेम और मिठास होनी चाहिए। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विधिनम कुरु मे देवा सर्वकार्यशु सर्वदा। रूबरू मिलने का मौका नहीं पा रहा हूँ, अतः शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमन करता हूँ। ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है और कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश जो यहाँ से प्रारंभ हो गया है। आज कुछ अच्छे अच्छे विषय लेकर के हम सब आपके साथ जुड़ गए हैं और हमारे साथ बबली आसरा जी और अभी जुड़ने वाले हैं अनुराधा चंद्र जी जो भारत से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं।

0: ज्योति के प्रकाश में सभी सुनने वालों को अनुराधा का नमस्कार। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज जो मैं आपसे बातें करना चाहूँगी तो वो जीवन के बारे में है। देखिए, जीवन नामक इस नाटक में जन्म से लेकर धरती पर होने वाली हर घटना को कर्म नियंत्रित करता है। यानी कि जो हम जैसा जीवन में काम करते हैं, अच्छा या बुरा, वो नियंत्रित करता है। जो भी कुछ हो रहा है वह भाग्य नहीं है। हम जो बीज बोते हैं उसका फल हम ही खाते हैं। हमारे सभी कर्म द्वारा दर्ज किए जाते हैं और वे एक एक करके हमारे सामने प्रकट होते हैं। देखिए, अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें स्वीकार करना सीखना होगा। अगर हम विरोध करेंगे, रोएंगे, आसमान की ओर देखेंगे और पूछेंगे क्यों, तो हम केवल दुखी ही होंगे। देखिए, जीवन में हमें बहुत से ऐसे हमारे जीवन में बहुत ऐसे क्षण आते हैं और बहुत ऐसी बातें होती हैं जहाँ हमें अच्छा कुछ करना चाहिए, पर अगर हम नहीं करेंगे तो देखिए फिर हम रोएंगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये तो आपके कर्म पर है, आप कैसा कुछ कर रहे हैं। जैसा बोएंगे तो वैसा उसका फल आपको मिलेगा। संजय जी, मैं आगे बढ़ना चाहूँगी, क्यों ना एक गीत हो जाए, फिर मैं आगे सबको और इसके बारे में बताना चाहूँगी।
1: बिल्कुल अनुराधा जी, और एक गीत मैंने चुन करके रख दिया है कि जीवन भर ढूंढा जिसको, तो सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा।

0: सुनने वालों, आज का हमारे शीर्षक जीवन जो अनुराधा जी हम सबको सुनाने वाले हैं, आगे के ओर बढ़ने से पहले अनुराधा जी क्यों ना इस पे भी थोड़ा से ध्यान दिया जाए कि कहने वाले कह गए हैं कि चरित्र और वस्त्र कितने भी चमत्कार हो, देखने वाला तो बस सिर्फ दाग ही पे ध्यान देते हैं। आगे का संदेश क्या है अनुराधा जी?
1: तो चलिए आगे बढ़ा जाए और बताएं कि आगे हम जो बात कर रहे थे उसको हम आगे चलाते हैं। जो लोग वास्तव में खुश हैं, वे जीवन को समझते हैं, उन्हें एहसास होता है कि कोई भगवान स्वर्ग में नहीं बैठा है जो हमें दुख दे रहा है। उन्हें एहसास होता है कि कर्म से कोई गलती नहीं होती, आप जो देते हैं वही आपको मिलता है, आप जो करते हैं वही आपको वापस मिलता है। इसीलिए अगर जीवन में कुछ हो रहा है तो हमें उसे स्वीकार करना होगा, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। बेशक हमारे पास अभी अपने कर्मों को बदलने का विकल्प है, हम बदल सकते हैं, तो यह हमारे ऊपर है, हम बदल सकते हैं। एक बार जब हम नए कर्म करते हैं तो वे नए कर्म बन जाते हैं और वे नए बीज बन जाते हैं जो नए ताज़े फल देते हैं। तो अगर हम लगे रहें, हम लगातार हमने ठान लिया कि हमें वो करना है, तो हम अच्छे कर्म हमने सोच लिया कि हमें करना है, तो हम अगर हम ठान लें कि हमें यही करना है तो हम कर सकते हैं। अगर हमने ठान ली हम अच्छा करेंगे तो ये सोच लीजिए कि हमें पता है हमें फल भी अच्छा ही मिलेगा। तो इसीलिए अगर हमारे जीवन के बगीचे में दुख बढ़ रहा है तो हमें खुद को छोड़कर किसी और को दोष देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कुछ हमारे जीवन में अच्छा होता है तो वो हमारे कर्म की वजह से है। अगर हम जैसा काम कर रहे हैं और अगर हमें दुख की प्राप्ति हो रही है तो ये सब भी ये हमें सोच लेना चाहिए कि हमारा जीवन कैसा चल रहा है, तो हम उसको अच्छा बना सकते हैं। संजय जी, मैं आगे बढ़ूं, क्यों ना एक गीत हो जाए?
0: बिल्कुल अनुराधा जी, मैं दूसरा गीत खोज करके रख चुके हैं प्लेयर पर, तो दूसरा गीत की ओर लता जी के आवाज़ में।

इंसान होता है प्यार करने के लिए, पैसे होता है उपयोग करने के लिए, किंतु लोग प्यार पैसे से करते हैं और उपयोग इंसान का करते हैं। आप सुनते रहना जीवन का संदेश, जो अनुराधा चंद्र जी हम सबको सुना रहे हैं।

0: कुछ हासिल करने के लिए जरूरी नहीं है कि हमेशा दौड़ा ही जाए। बहुत सारी चीजें टहलने से भी प्राप्त हो जाती है, जैसे सुख, शांति और सुकून। और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो जो 24 घंटा आपके साथ है। जिंदगी जीने के अनेक तरीका हो सकते हैं, मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को संतुष्ट मिले और दूसरों को कष्ट ना हो। अनुराधा जी, अपना संदेश को आगे रखिए।
1: अब आगे बढ़ते हैं। इसीलिए जो लोग खुश हैं वे अपेक्षा नहीं करते, वे स्वीकार करते हैं। क्योंकि जब आप अपेक्षा करते हैं तो आप दुखी होते हैं। यानी कि जब आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ऐसा होगा और वो ना हो तब आप दुखी होंगे, लेकिन जब आप स्वीकार करते हैं और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप आनंद और शांति के साथ रहते हैं। क्योंकि देखिए, जीवन में हमारे जीवन में बहुत दुख सुख आते हैं, तो या तो आप कोई चीज़ को एक्सेप्ट कर लें, उसको स्वीकार कर लें, उसमें ज़्यादा आपको शांति मिलेगी, प्राप्ति होगी कि ऐसा है तो ऐसे ही रहेगा। अगर आप ये सोचें कि नहीं, मेरे जीवन में ये ऐसा दुख क्यों हो रहा है, ऐसा मेरे को खुशी ही मिलनी चाहिए, मैं खुश रहूं, मैं खुश क्यों नहीं रह पा रहा हूं, मेरे साथ ऐसा गलत, अगर आप इसी को आप ऐसा सोचते रहेंगे तो आप कभी खुश नहीं रहेंगे। पर अगर आप उसको स्वीकार कर लें कि हाँ, ये पल, देखिए हर चीज दुख और सुख तो सब चलता है साथ में, ये तो नहीं कि आपके साथ सुख ही सुख मिलेगा, ऐसी दुख भी होएगा, तो ये सब जीवन का, जीवन में आएगा ही आएगा। दुख सुख तो एक गाड़ी के दो पहिए हैं, साथ साथ चलते हैं। तो जब आप इसको स्वीकार कर लें कि ये जीवन में आएगा, तो आप उसमें आपको ज्यादा शांति का एहसास होगा। स्वीकृति बुद्धिमानों के लिए एक उपहार है, क्योंकि वे समझते हैं कि स्वीकार करना ही खुश होना है। तो जो बुद्धिमान है वो समझ जाता है कि हमने इसको स्वीकार कर लिया, वो खुश रहेगा। परंतु अगर आप जो स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि जो कुछ भी होता है उसे भी खुशी से स्वीकार करते हैं, देखिए ये है कि अगर जो नहीं भी होता है ना आपके जीवन में, अगर उसको भी आप स्वीकार कर लें, देखिए ये मेरे तरीके से नहीं हो रहा, क्योंकि जीवन में जो आप चाहते हैं वैसा तो कभी नहीं होएगा। आप हो सकता है कोई एक जॉब जा रहे हैं, या आप कुछ ऐसा, आपको आपके जीवन में आप चाहते हैं ऐसा हो कि भाई मेरा मेरे जीवन में मेरे बच्चों का ऐसा हो या ऐसा हो, पर वैसा नहीं जाता जीवन में, तो आप निराश हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। पर उसको अगर स्वीकार कर लें कि देखो जो है सो ऐसा ही होएगा, तो जहां आपने स्वीकार करा तो आप का मन हल्का हो जाएगा और आप एक तरह से आपको शांति मिलेगी, मन की शांति मिलेगी। देखिए जीवन में ऐसी कुछ चीजें हुई होती हैं जो इतनी सुखद नहीं होती हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारे हमें वो अच्छी नहीं लगती हैं, हम नहीं चाहते वो हमारे जीवन में हो, अच्छा नहीं होता, तो हम वो तो ऐसे समझते हैं कि हो सकता है भी हमारे पिछले कर्मों का प्रायश्चित कर, जब इंसान करता है ना कि भाई हो सकता है कि ये ऐसा हुआ है तो हमारे पिछले जन्मों का ये उसके वजह से हुआ है, तो वो एक तरह से उसको स्वीकार कर लेते हैं। जब एक बार स्वीकार हो गया कि हो सकता है ऐसा हो सकता है, तो उन ऐसे लोगों को कष्ट नहीं उठाना पड़ता है, क्योंकि

और जहां आपने अपने जीवन का जीवन के बारे में समझ लिया और उसको स्वीकार कर लिया, तो आपका जीवन बहुत अच्छा कटेगा। आप कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें, कोई अपेक्षा ना करें कि मेरा जीवन ऐसे ही होना चाहिए, जैसा भी है उसको आप करें और अपना जीवन अच्छा अच्छे तरीके से जिए। देखिए, हम में से बहुत से लोग कड़वाहट भरी जिंदगी जीते हैं। हम अतीत में, मतलब पुराने, हमेशा पीछे पिछला क्या हुआ उसमें हम जीते हैं और पछताते, शर्म भी करते हैं और अपने आप को एक तरह से गिल्ट की फीलिंग लाते हैं, अपराध बोध यानी गिल्ट से भरे रहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने कुछ गलत करा है और आपके पास हमेशा मन में वो बैठ जाता है कि मैंने ऐसा करा है, इससे हमें क्या मदद मिलेगी? जो हो गया सो हो गया। अब आप पिछले पुराने समय में तो नहीं वापस जा सकते, तो जो हो गया आप उसकी पुरानी बातों को भूल जाइए, उस बातों को भूल जाना चाहिए, उस पर उसमें सोच विचार नहीं करना चाहिए जो हो गया, क्योंकि आप पीछे तो नहीं जा सकते जीवन में, जीवन तो आगे ही चलता रहता है। आप पुराना जो बीत गया बीत गया, तो उसमें हमें आगे ही बढ़ना होता है। हम इसे बदल नहीं सकते, हम अपना पुराना वो बदल नहीं सकते, कल हमें आगे का सोचना होता है। लेकिन क्योंकि कोई स्वीकृति नहीं है, हम दुखी हैं क्योंकि हमने उसको स्वीकार नहीं करा है कि जो हम पिछले हमारे जीवन में क्या हुआ, हमने उसको स्वीकृत नहीं करा, तो हम दुखी हो जाते हैं। अगर हम दुखी हो जाते हैं, हमारा मन हमेशा वो वैसे, हमारा जीवन भी वैसे ही बन जाता है। हम हर समय अपने आप को स्ट्रेस में दुखी होकर हमेशा हम दुखी रहेंगे। जो लोग कर्म को समझते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं, वे जानते हैं कि अतीत खत्म हो चुका है, जो हमारा पास्ट था वो खत्म हो चुका है। सो वो क्या करते हैं, ना केवल वे बिना विरोध के स्वीकार करते हैं, बल्कि वे जो भी कार्य करते हैं उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, फिर सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। हालांकि जो लोग स्वीकार नहीं करते हैं वे अपने दुखों से चिपके रहते हैं और खुशियां उनसे दूर हो जाती हैं, पर जो स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, जो अपने आप को समर्पित कर देते हैं कि चलिए जो हुआ वो भगवान की मर्जी है, ऐसा है तो इसमें हम आपके ऊपर, आपके हाथ में कुछ भी नहीं, तो वो अपना जीवन उनका बहुत अच्छा करता है। तो ये देखिए, जीवन की यह आपके ऊपर है कि आप कैसी अपनी सोच रखते हैं। चलिए संजय जी, एक और गीत हो जाए फिर हम आगे बढ़ते हैं।

चलिए आगे बढ़ा जाए। क्या आप वाकई खुश रहना चाहते हैं? अगर हाँ तो दोस्तों, अपने जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे स्वीकार करें और उसके लिए आभारी होने की आदत डालें। आभारी मतलब उस पर बी ग्रेटफुल। ईश्वर पर भरोसा रखें, भगवान पर भरोसा रखें कि और उस उन पर भरोसा रखें कि वह हमेशा जो वो करेंगे वो आपके लिए अच्छा ही होगा। सार्वभौमिक नियमों पर विश्वास रख करें। भगवान आपके लिए इस संसार के लिए में हम सबके लिए कर रहे हैं, हर इंसान के लिए वो आपके लिए अच्छा ही है। तो याद रखें, आप भगवान पर भरोसा हमेशा रखें, जीवन से सारी कड़वाहट निकाल दें। आपके मन में जो भी कुछ ऐसे कोई सोच है या आपका मन दुखी है, आपकी कड़वाहट जीवन में, आपकी बहुत बातें होती हैं बीते हुए जीवन में जो आपके साथ घटी हैं, वो अपने दिमाग से निकाल दें। जो कुछ भी हुआ वो हो गया, अब वो बदल नहीं सकता और आप उसको बदल नहीं सकते। ये अगर आपने समझ लिया तो ये बहुत एक बड़ी प्राप्ति है, क्योंकि हम इसी विश्वास के साथ अपना ये सोचते रहते हैं कि उसी पुराने पलों को, पुरानी चीज़ों को हम उसको बार बार सोचते हैं मन में और उससे अपना मन दुखी करते हैं कि ऐसा हुआ। तो देखिए, जो पुरानी बात गई उसको हम बदल नहीं सकते, परंतु आगे जो होने वाला है उसको हम जरूर बदल सकते हैं, क्योंकि वो आने वाला है। तो इसलिए पुरानी बातें हैं आप भूल जाएं, पुरानी जीवन से सारी कड़वाहट अपने जीवन से, वो सोच है वो खत्म कर दे। देखिए, जो हो गया तो आप वो तो बदल नहीं सकते हैं, वो खत्म हो गया है। इसलिए दूध के टुकड़े रोइएगा नहीं, है जो कहते हैं ना, जो दूध गिर गया, कहते हैं ना दूध गिर गया अगर, तो आप रोकर उस पर क्या फायदा कि आप कहें कि भाई देखो गिर गया, वो वापस तो आप ग्लास में नहीं डाल सकते हैं। तो जो गिर गया तो इसलिए आप उस पर ना रोएं, बिना विरोध के स्वीकार करें और अपने जीवन में ये स्वीकार करें कि जो हो रहा है उसको जैसा है वो ठीक है, और मुस्कराएं, खुश रहें। यह वर्तमान को बदल सकता है, क्योंकि जैसा अगर आप मुस्कराएंगे, खुश रहेंगे, तो ये आपका वर्तमान मतलब यानी कि प्रेजेंट मोमेंट है, जो प्रेजेंट आप जीवन जी रहे हैं वो बदल देगा। तो ये आप ही के लिए अच्छी बात है कि वो आपका जीवन अच्छा बन जाएगा और आपके भविष्य को बेहतर बना सकता है, आपका फ्यूचर और अच्छा कर सकता है। तो अगर आप खुश रहना सीख लें, पुरानी बातों को भूल जाएं और अभी खुश रहें, तो आपका जो प्रेजेंट टाइम है वो भी अच्छा कटेगा और उसकी वजह से आपके आने वाला कल भी